यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

कर्फ्यू लागू किया गया है कोची मिलिते और सैंपियर में। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने माता पिता और बड़े बुजुर्गों से अपील की है कि वे सुनिश्चित करें कि नाबालिग लोग कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। अपराध किए जाने की स्थिति में नाबालिगों की कानूनी उम्र पर गौर करने का एक प्रस्ताव आज मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने उन मरुशनों को धन्यवाद दिया जिन्होंने कर्फ्यू का पालन किया। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील करने वाले लोगों और विभिन्न इलाकों में पुलिस की सहायता करने वालों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और SMF अधिक सख्ती से कार्रवाई करेंगे, लेकिन हर परिस्थिति में विवेक और सूझबूझ के साथ निर्णय लिया जाएगा। मॉरिशस में हुई हिंसा और नशीले पदार्थों की तस्करी के बीच संभावित संबंधों पर जांच की जा रही है। साथ ही ये भी समझने का प्रयास किया जा रहा है कि सामाजिक और आर्थिक समस्याएं किस तरह युवाओं को तस्करी के जाल में धकेल सकती हैं। सुरक्षा स्थिति के कारण स्कूल और शिक्षण संस्थान 15 और 16 अक्टूबर को बंद रहेंगे, लेकिन कैम्ब्रिज की परीक्षा

परीक्षाएं देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर सामान्य रूप से आयोजित की जाएंगी। नवरात्र के पांचवें दिन स्कंद माता की आराधना आज, जो प्रेम, ममता और करुणा तथा मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। विदेश में यूक्रेन के कुछ हथियारों की गति और स्पेस एक्स के स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क से उनके जुड़े रहने की क्षमता पर लगाई गई पाबंदियों के पीछे अमेरिकी सरकार का हाथ हो सकता है, ऐसा एलन मस्क का कहना है। और अब मौसम की रिपोर्ट। मस्कनिंस के दक्षिण में स्थित एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर कुछ तेज हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि मौसम को बादल की तरफ बादल भी आज रात को मौसम को प्रभावित करेंगे। सुबह के वक्त आसमान में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे, जो कभी कभार घने हो जाएंगे, खासकर पूर्व दक्षिण एवं ऊंचाइयों पर और जहां तहां बारिश हो सकती है। दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन रात के दौरान आसमान में बादल घिर आएंगे और पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्रांतों पर रह कर बारिश हो सकती है। अन्य इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 5:39 पर, सूर्यास्त होगा 6:11 पर। पूरा बुलेटिन 6:30, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार। Your news on NBC Play.

0: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत। चलिए श्रोता, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 6:05 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। कहते हैं कि हर किरण जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आती है, तो चलिए इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। श्रोताओं, साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वैसे बहुत ही प्यारा सा सफर है इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक। गुरुवार का ये दिन आप सभी को बेहद ही शुभ हो, दिल की गहराई से हमारी यही कामना है। तो चलिए, जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुभ विचारों के साथ इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं दिव्य दृष्टि कार्यक्रम के साथ।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में सुनिए कार्यक्रम दिव्य दृष्टि, ज्ञान भक्ति एवं श्रद्धा का प्रतीक दिव्य दृष्टि।

योऽन्तः प्रविश ममवाच मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। दिव्य दृष्टि के समस्त श्रोताओं को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस समय पूरा हिंदू संसार माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा

की उपासना कर रहा है। माँ भगवती जगदम्बा जिनके बिना और ये संसार संभव ही नहीं है, वास्तव में ये संसार जो है माँ भगवती की कृपा से ही तो और बना हुआ है। तो ऐसे माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की हम और प्रार्थना कर रहे हैं। माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा आपकी सब मनोकामना परिपूर्ण करे। देवताओं ने और प्रार्थना करते समय कहा है कि हे माँ कि देव्या यया तदमिदम जगदात्मशक्त्या निशेष देवगणशक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकाखिल देवमहर्षि पूज्याम भक्त्या नतास्म विदधातु शुभा निशान। देवता प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, अर्थात संपूर्ण देवताओं से ही जो उत्पन्न हुई है, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और ऋषियों की पूजनिया उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। हे माँ आप हमारा कल्याण करें। स्वयं कहते हैं कि यस्याः प्रभावमतुलं भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चंडिका खिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभ भयस्य मतिं करोतु। कि जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, भगवान ब्रह्मा जी एवं भगवान महादेव भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और समस्त अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। हे देवी हमारा कल्याण करें। आप जब प्रार्थना कर रहे हैं श्रोताओं, तो इसी भाव से प्रार्थना आप करते रहें कि माँ जगदम्बा हमारे साथ साथ इस संसार का भी कल्याण करें, क्योंकि भगवती तो और संसार का कल्याण करने वाली देवी है। माँ जगदम्बा के मन में जो है और अथाह करुणा है, दया है, से परिपूर्ण है माँ जगदम्बा। यदि आप माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों में बैठ करके उपवास करोगे, तो ज़रूर माँ दुर्गा आपका कल्याण करेगी। श्रोताओं, माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा, क्योंकि हमें ये सत्संग करने का बहुत सुंदर और मौका मिला हुआ है। श्रोताओं, यदि हम सब लोग बैठ करके कथाओं को सुने, और कथाओं को कैसे सुने, ध्यान से सुने। स्वयं भागवत में और भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि सावधान तया श्रृणु, कि आप कथा कैसे सुने, सावधान होकर के सुने। जब तक हम सावधान होकर के नहीं सुनेंगे वो कथा हमारे और समझ में नहीं आएगी। सुखदेव जी ने और भागवत सुनाया, हजारों लोगों ने सुना, लेकिन उसका प्रभाव से मोक्ष केवल परीक्षित को हुआ। गोकर्ण जी ने बहुत लोगों को सुनाया कथा, लेकिन मोक्ष के किसको हुआ, सिर्फ और सिर्फ धुंधुकारी को मोक्ष हुआ। तो ये प्रश्न उठता है कि दृष्टि व्यापक हो और तृप्ति एक मनुष्य को हो, तो ये तो बात नहीं बनती है, है ना। सब इतना पानी बरसा और इतने लोगों के ऊपर बरसा और तृप्ति जो है सिर्फ एक ही की हुई, तो ये कैसी बात है। बात ये है श्रोताओं कि मोक्ष का जो संबंध है वो मन से है। जिसका मनन किया जाता है उसी का संस्कार दृढ़ होता है। जो निरंतर मनन करेगा तो भाई वो निरंतर जप करेगा तो उसी का तो जप सिद्ध होगा। तो और संस्कारों में दृढ़ता जो है उसकी होगी, और जब संस्कारों में दृढ़ता ही तो श्रोताओं जीव का बंधन और मोक्ष निर्भर करता है। श्रुति और स्मृति मतलब वेद और शास्त्र दोनों का यही सिद्धांत है। श्रोताओं, श्रुति कहती है कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो। याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है कि ध्यान एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो। जो सिद्धांत या जो भगवत संबंधी वार्ता सत्संग में सुनी जाए उस पर भली प्रकार

विस्तार से विचार करके उसको मनन करते रहना चाहिए। आप कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने के बाद उस पर मनन भी करें, तब उस कथा का लाभ है श्रोताओं, तब उस पूजा का लाभ है। जब आप और पूजा करके तुरंत ऐसे ही बिना विचारे चले गए, विचार नहीं किया, मनन नहीं किया, तो लाभ नहीं होता है श्रोताओं, है ना। तो सत्संग की बात सुनने से श्रोताओं वो कान तो पवित्र होंगे ही, परंतु यदि उन पर कुछ विचार नहीं किया गया, कुछ मनन नहीं किया गया, तो सब वो जो है कान तक ही रह जाएगा और एक कान से होकर के दूसरे कान से निकल करके बाहर आ जाएगा। और सत्संग की सारी बात का जो प्रयोजन है, मन के अंतःकरण को पवित्र करना है श्रोताओं। मन ही तो प्रधान वस्तु है, इसीलिए कहा ना कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि भाई अगर आपका मन ही जो है संतुष्ट नहीं है, जब तक मन ही एकाग्र नहीं है, तो श्रोताओं ये कथा बैठेगी कैसे, है ना। तो मन यदि अपवित्र रहा तो इसी के कारण तो जन्म मरण का चक्कर जो है और वो चलता रहेगा, और यदि मन पवित्र हो गया तो उसी से मोक्ष हो जाएगा। श्रोताओं, महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने ध्यान को ही बंधन या मोक्ष का कारण बताया। ध्यान मन करता है ना, मन ही तो ध्यान करता है। मन पवित्र हुआ तो भाई पवित्र चीज का, भगवान का ध्यान करता हुआ मनुष्य मोक्ष प्राप्त करेगा, पवित्र चीज को ध्यान करेगा। और संसार में पवित्र क्या है? संसार में एक ही चीज पवित्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम मिह विद्यते, कि भाई ज्ञान से बढ़कर के संसार में पवित्रतम कोई वस्तु नहीं है, सिर्फ भगवान पवित्र हैं, क्योंकि ज्ञान जो है वही परमात्मा है। मन पवित्र हुआ तो भगवान का ध्यान करता हुआ मोक्ष प्राप्त करेगा, और यदि मन अपवित्र रहा तो नाना प्रकार की वासनाओं में फंसा रह करके अपने अनर्थ का चिंतन करता हुआ, अनावश्यक वस्तुओं का ध्यान करता हुआ संसार के चक्र में, और मन उसे घुमाता रहेगा श्रोताओं। तो ये जो ये हम सत्संग कर रहे हैं, जो ये पूजा कर रहे हैं, वास्तव में अपने मन को शुद्ध करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। हम और माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की कथा सुने, वो कथा सुन करके मन में उस कथा को बिठाएं कि किस प्रकार से माँ जगदम्बा ने महिषासुर, रक्तबीज और शुंभ निशुंभ, ये सब जो हैं और इन राक्षसों का विनाश किया। ये ही राक्षस जो हैं आज, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये इनका स्वरूप बदल करके ये राक्षस अब बाहर से लेकर सीधे हमारे भीतर में बैठ गए हैं। श्रोताओं, इन्हीं राक्षसों को मन से बाहर निकालने के लिए हमारे ऋषियों ने हमको दुर्गा पूजा करने का विधान दिया है। हम और दुर्गा की पूजा करें, प्रार्थना करें, अपने घर में ही बैठ करके हम आराधना करें, क्योंकि महात्मा लोग कहते हैं ना कि जो जहाँ है वहीं रह करके महात्मा बन सकता है, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई वो अलग अलग प्रकार के तिलक, छाप, रंग के कपड़े पहने, ये अलग अलग रंग के कपड़े पहन करके तिलक छाप लगाने से कोई महात्मा थोड़ी नहीं होता है श्रोताओं। वेश कल्याणकारी नहीं होता है, कल्याणकारी क्या होता है? निष्ठा, श्रद्धा, इससे कल्याण होता है। मन की वृत्ति में महात्मापन होता है, इसलिए जहां हो वहीं रहते हुए अपनी मन की धारा को बदलो, संसार का चिंतन भीतर से कम करो और परमात्मा का चिंतन बढ़ाओ। इसीलिए तो कहा 9 दिन तक बैठो, कम से कम 9 दिन तक बैठ करके उस आद्या शक्ति जगदम्बा का चिंतन करो, है ना। आजकल अचिंत्य को चिंत्य मान लिया गया, जिसका चिंतन नहीं करना चाहिए उसी का चिंतन ज़्यादा हो रहा है, और जो मुख्य चिंत्य परमात्मा ही है श्रोताओं, उसका चिंतन न करके संसारी पदार्थों का चिंतन किया जाता है। इसीलिए सुख शांति का अनुभव नहीं होने पाता है, क्योंकि संसार में और सुख नहीं है। माँ देवहूति ने भगवान कपिल मुनि से पूछा था,
कि हे भगवान इस संसार में सुख कहाँ है, तो भगवान कपिल मुनि ने कहा माँ इस संसार में सुख का प्रबंध नहीं है, इस संसार में सुख है ही नहीं।

0: तो माँ ने पूछा था भगवान कपिल मुनि से कि हे भगवान, तो हमको जो ये दिखाई दे रहा है संसार में फलाना आदमी सुखी है, फलाना आदमी आनंद में है, ये क्या है फिर? तो भगवान ने कहा, माँ वो साधन जन्य आनंद है, जब तक साधन है तभी तक वो आनंद है, संसार में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, सुख कहाँ है? केवल और केवल परमात्मा में है। हम 9 दिनों तक माँ दुर्गा से जुड़ें, प्रार्थना करें, हमें अपार सुख की प्राप्ति होगी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिव्य दृष्टि।

0: की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: चलिए श्रोताओं, 6:19 हो चुके हैं।
0: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: इस हिंदुस्तानी सभा को हम जारी रखते हैं और अब आपको

आलयम। नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। शक्ति तत्व, समस्त ग्रह ताराराजी विराजित, दिवाकर निशाकर प्रमोदासित, सिंह व्याघ्रादिवनीय, मृग्र निवादित, उतंग हिमालयादित, महिघर विराजरित, तरंगमाला कुलानेन प्रयोधित, समाकलित सर्वगण्य प्रकृतिक सुषमा विलसित, यह अनंत अपार अगण्य ब्रह्मांड पिंड रूप

चित्र विचित्र जगत जिनके उत्पन्न तथा पालित होकर के अंत में जिन में समालीन हो जाता है, वही अंतर्नीय महिमाशाली गुणत्रय विभाविनी भक्त जननी विरार भयदायिनी श्री शक्ति देवी है। गणपतियों के जो सुंदर रुचारी मोदकधारी श्री गणपति है, वैष्णवों के जो नंदी विहारी पिनाकधारी सिद्ध सदा शिव है, सौरों के जो मिर्चामाली गुणगणाशाली श्री सविता है, वैष्णवों के जो मनंथ मोहन त्रिलोक विष्णु श्री जिष्णु जी है, वही शक्ति के सौम्य सौम्य तारा अशेमं सोयंभ्य स्वस्ति सुंदरे ही परा परा परामण्य परमात्म त्रैलोकी परमेश्वरी श्री शक्ति देवी है। वेदों में कस्मै देवाय हविषा विद्महे आदि अनेक मंत्रों में फुलंग शब्द द्वारा तथा वेदांतों के यतो वा इमानि भूतानि जायते है तद्विज्ञा तस्मस्य तद्ब्रह्म आदि वाक्य में नपुंसकलिंग शब्दों द्वारा जिस परम तथा चरम तत्व का प्रतिपादन किया गया है, वही शक्ति की स्त्रीलिंग शब्द सूचित शक्ति देवी है। भेद भाषा तथा व्याकरण के व्यवहार मात्र का है और परमात्र दृष्टि से पूर्ण अभेद है। शक्ति में ही यह समस्त जगत अवस्थित है, अथवा यह कह सकते हैं कि इस संसार का आधार शक्ति है। आधार भूतादि जगतस्वंतका विश्वामिकाः धार्यसि विश्वम् तत्वे त्वं धार्यते विश्वम् मार्कण्डेय पुराण में वेदोक्त तस्मै तस्य तु भुवानिस्तम विश्वा तथा गीता सूक्त में त्वं तस्यं विश्वभ्य परं निधायताम् व्याक्ति सदृष्टा ध्यान देने योग्य है। परिचिन मानव बुद्धि अपरिचिन शक्ति की महंता की धारणा नहीं कह सकती। शक्ति की सर्वगुण चिंता मनुष्य के विचार से परे है, अतएव वे अचित्य है कि वाराणस्यां त्वां रूपस्यतस्मितं यां मुक्तिं हेतु विचित्रमातं व्रता त्वां मार्कण्डेय में लिखा गया है। गीता के सर्वत्र मयि अत्यंतम वचनम च वचन का सदृश स्पष्ट है। यह त्रिगुणमयी विश्व शक्ति में इस प्रकार विराजमान है, जिस प्रकार महाव्याप्ध में मछली तात्विक विचार से जल राशि और मत्स्य में दृष्टा के लिए द्वेभाव है ही, परंतु विशेष विकक्षा न होने पर दृष्टा मैं केवल एक समुद्र देख रहा हूँ ऐसा कहने तो अद्वितीय भाव होता है। परमात्मा रूप आधार में निहित गुण जात जगत के विशेष में भी द्विज है, अद्वितीय कल्पना है, विकक्षा भेद से उपयुक्त है। जड़ जगत कल्प आदि में परमेश्वर की शरीर रूप प्रकृति से उत्पन्न हो करके कल्पांत में फिर वही समा जाता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यातिम ममाप्तिकाम कल्प वृक्षेण पुनास्ते हे कल्पादे विचात्म्यहम। जिस प्रकार जीवात्मा ज्ञान गुण के बल से शरीर में व्याप्त है, उसी प्रकार

महेश्वर अपनी माया से समस्त प्राकृतिक जगत में व्याप्त है। वे केवल जड़ जगत में तो अपितु चेतन जीवन में भी। यस्थात्मां शरीरम् षट्पद ग्रंथ में इस प्रकार से कहा गया है। इसी विचारधारा को दृष्टि में

स्वरूप भी इसी बात का समर्थन करता है। शक्ति सर्वत्र व्यापक है, सभी प्राकृतिक पृथ्वी आदि पदार्थ उनके शरीर है, अतएव शरीर शारीरिक के व्यवहारिक अभेद को स्वीकार करके उनका शक्ति का जगत से तद्वैप्य संबंध स्थान स्थान पर उपवर्णित है। इसी अभेद के अनुसार प्रकृति विश्व का मूल कारण शक्ति ही कही जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम्।

नमस्कार। सबसे पहले आज की सुर्खियां। दो अशांत रातों के बाद अब पूरे देश में शांति लौटती दिखाई दे रही, कम से कम आधिकारिक तौर पर कल रात किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली। कर्फ्यू कल रात भी लागू रहा और आज भी रात 8:30 बजे से कल सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दो अन्य इलाकों में भी कर्फ्यू लागू किया गया, कौचमिलिते और सैंपियर। प्रधानमंत्री ने कल इसका ऐलान किया। उन्होंने नाबालिगों द्वारा कर्फ्यू का पालन करने पर जोर दिया। मॉरिशस में हुई हिंसा और नशीले पदार्थों की तस्करी के बीच संभावित संबंधों पर जांच, साथ ही ये भी समझने का प्रयास कि सामाजिक और आर्थिक समस्याएं किस तरह युवाओं को तस्करी के जाल में धकेल सकती हैं। सुरक्षा स्थिति के कारण स्कूल और शिक्षण संस्थान 15 और 16 अक्टूबर को बंद, लेकिन कैम्ब्रिज की परीक्षाएं देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर सामान्य रूप से आयोजित की जाएंगी। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना, जो प्रेम ममता और करुणा तथा मातृत्व का प्रतीक, उनकी पूजा करने से भक्तों को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति। विदेश में यूक्रेन के कुछ हथियारों की गति और स्पेस एक्स के स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क से उनके जुड़े रहने की क्षमता पर लगाई गई पाबंदियों के पीछे हो सकता है अमेरिकी सरकार का हाथ। और अब समाचार विस्तार से। दो अशांत रातों के बाद अब पूरे देश में शांति लौटती दिखाई दे रही है, कम से कम आधिकारिक तौर पर कल रात किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली। इसलिए आज सुबह देश के लोग इस उम्मीद के साथ जग रहे हैं कि शायद सबसे मुश्किल दौर अब पीछे छूट चुका है। ये कहना होगा कि सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने द्वीप के कई क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। ये कर्फ्यू अब शुक्रवार तक बढ़ा दिया गया है और रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली इन घटनाओं के पीछे दूर से काम करने वाले कुछ गुप्त ताकतों का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। गौरतलब है कि कल इन घटनाओं के सिलसिले में 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक खास मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार ने अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और सख्त करने

0: का निर्णय लिया। अब गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आतंकवाद की रोकथाम से संबंधित कानून के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
1: Mais vous considérez que la police et KSMF vous visent agir plus fermement envers les fauteurs de troubles. Et ces visent servent une méthode plus sévère, mais toujours avec discernement. Faudrait qu'il est clair, c'est qui prend la loi dans ce lamé pour subir les conséquences. La police et KSMF, pas pour une aucune hésitation, pour servir les moyens nécessaires pour empêcher la situation dégradée. Faudrait qu'il est clair dans la tête du monde. Nous continuerons vigilants dans nos situations et nous restons confiants le progrès que la police peut faire pour démanteler le savane réseau pour payer les gens vulnérables et les enfants pour faire des ordres dans nos pays.
0: नाबालिगों की कानूनी उम्र 14 से घटाकर 12 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। हिंसक घटनाओं में बड़ी संख्या में नाबालिगों की कथित संलिप्तता को देखते हुए सरकार चिल्ड्रंस एक्ट में संशोधन करने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य उस उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करना है जिस उम्र से नाबालिगों को हिरासत में रखा जा सके और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस खबर की पुष्टि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने की। उन्होंने लगातार दूसरी रात मॉरिशस के राष्ट्रीय प्रसारण स्टेशन MBC पर देश को संबोधित किया। उनको सुनते हैं।
1: 94 जिमून फिन अरेटे ला डेन 16 मिनेर फे सा ग्रेन कौन टू बन जन पे गार्ड सुत ला वी कम सा ला पुलिस इन बिजन लॉग जुट पास कि ला लॉ पा permettre la police retenir les autres. En conséquence, nous pouvons considérer que la loi concernant l'âge légal pour arrêter un mineur. Nous pouvons examiner cette loi-là vendredi au Conseil des ministres.
0: एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत आधी रात से गालन के हिसाब से ईंधन खरीदने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अब ये सुविधा केवल पेशेवर काम करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इसके लिए उन्हें पहचान पत्र और अपने काम से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित न्यूनतम मात्रा संबंधी शर्तों का पालन करना होगा। इसके अलावा पुलिस की साइबर अपराध इकाई सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रख रही है। नफरत फैलाने वाले भाषणों और हिंसा के लिए उकसाने वाली पोस्ट प्रकाशित करने वालों के खिलाफ तत्काल जांच शुरू की जाएगी। सोमवार से बुधवार सुबह के बीच पूरे द्वीप में आग की लपटों ने लगभग 11,000 टन गन्ने को नष्ट कर दिया। बेकाबू आग की इन घटनाओं से कटाई के मौसम के बीच पूरा कृषि क्षेत्र भारी नुकसान झेल रहा है। आंकड़े स्थिति की गंभीरता स्पष्ट करते हैं। चांबा एग्रीकल्चर के अनुसार प्रभावित खेतों में चीनी का उत्पादन लगभग आधा रह जाने की आशंका है। सामान्य तौर पर जहां करीब 1,000 टन चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद थी, वहीं अब ये घटकर 500 से 800 टन रह सकता है। खेतों में काम करने वाले गन्ना उत्पादकों और मजदूरों के लिए ये नुकसान बेहद गंभीर हैं। उन्हें जल्दबाजी में जले हुए गन्ने की कटाई करनी पड़ रही है, भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और गैर जिम्मेदाराना कृत्यों के कारण उनका 2026 का गन्ना कटाई और चीनी उत्पादन अभियान प्रभावित हुआ है। और हिंसक घटनाओं में बड़ी नाबालिगों की कथित संलिप्तता को देखते हुए सरकार चिल्ड्रंस एक्ट में संशोधन करने पर विचार कर रही है। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो देश के सभी सरकारी और निजी विद्यालय आज और कल बंद रहेंगे। ये निर्णय प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा। इस कारण ग्रेड 4, ग्रेड 5 और NC की परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं। हालांकि इस सप्ताह निर्धारित SC और HSC की परीक्षाएं अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। मॉरिशस में हुई हिंसा और तोड़फोड़ ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है। नशीले पदार्थों की तस्करी के साथ इसके वास्तविक संबंध क्या हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जाँच के निष्कर्षों का इंतजार करना

0: होगा और घटनास्थल से जुटाई गई जानकारी की पुष्टि करनी होगी। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझना है कि इन घटनाओं में शामिल लोगों और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के बीच क्या संबंध है। बिना जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकाले चिंता का एक और विषय ये है कि सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया जाता दिखाई दे रहा है। इनमें सेफ सिटी के निगरानी कमरे, पुलिस की गाड़ियां और पुलिस थाने शामिल हैं। जब्त की गई मोटरसाइकिलें का भी इस्तेमाल भी पुलिस की कार्रवाई के दौरान तेज़ी से आने जाने या भागने के लिए किया जा सकता है। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल नाडक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कुणाल नायक इन संभावित पहलुओं और उन संबंधों पर प्रकाश डाल रहे हैं। उनसे बात की शबनीज उजिया ने, विवरण अशिता रघु का।
1: Bien, pour toi, qui nous fait la différence entre ce qu'on appelle consommateur de la drogue, ce qu'on appelle trafiquant et ce qu'on appelle jockey.
2: ये समझना ज़रूरी है कि नशे का सेवन करने वालों, ड्रग की तस्करी करने वालों और तथाकथित जॉकी के बीच अंतर क्या है। प्राप्त जानकारियों के मुताबिक जमीनी स्तर पर जो गतिविधियां सामने आ रही हैं, उनसे ये संकेत मिलता है कि इन तमाम अव्यवस्थाओं के पीछे ड्रग तस्करों के लिए काम करने वाले ये जॉकी हो सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि के लिए जांच के निष्कर्षों का इंतजार करना होगा, ताकि ड्रग के कारोबार से जुड़े वास्तविक नेटवर्क और उसके काम करने के तरीके को बेहतर ढंग से समझा जा सके। दूसरी ओर, अगर हम सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी ढांचों के बारे में बात करें, तो सेफ सिटी परियोजना के तहत निगरानी कैमरों को निशाना बनाया गया है तथा पुलिस वाहनों और पुलिस स्टेशनों पर भी हमले किए गए हैं। इसके अलावा जब्त की गई मोटरसाइकिलों को भी दोबारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। हम जानते हैं कि कई बार पुलिस जब ड्रग के खिलाफ कार्रवाई और छापेमारी करने जाती है तो इन मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल भी किया जाता है,
0: लेकिन जिन संबंधों की पुष्टि अभी बाकी है उनसे आगे एक और सवाल उठता है। नशीले पदार्थों की तस्करी लगातार क्यों बढ़ रही है? पिछले कुछ महीनों में नशीली पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कई कार्रवाई अभियान चलाए गए, लेकिन कुणाल नायक के अनुसार समस्या के मूल कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है। तस्कर सामाजिक असमानता, विकास की कमी और आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर ऐसे युवाओं को अपने जाल में फंसा सकते हैं जिन्हें उचित मार्गदर्शन और सहारे की कमी होती है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ युवा नशीली पदार्थों की तस्करी के जाल में फंस जाते हैं, जिसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। सुनते हैं नाडक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल नायक को एक बार फिर से।
1: Nous aussi, nous avons compris que dans les derniers mois, ils ont plusieurs opérations de crackdown.
2: हमें ये भी समझने की जरूरत है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान ड्रग के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई और छापेमारी की गई है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या हाल में जो कुछ हुआ है वह पुलिस बल और मौजूदा कानूनी व्यवस्था के खिलाफ किसी तरह की प्रतिक्रिया है? क्या ये कार्रवाई और सख्ती के जवाब में सामने आ रहा है? जब हम ड्रग की तस्करी की बात करते हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि इसका मौजूदा हालात पर क्या असर पड़ रहा है। तस्कर सामाजिक असमानता और विकास से जुड़ी कमियों का फायदा उठा रहे हैं। वे एक समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहे हैं जिस पर उनका नियंत्रण है। इस व्यवस्था के जरिए वे कभी कभी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने जाल में उन्हें फंसा देते हैं। नतीजन कुछ लोग ड्रग तस्करों के खिलाफ काम करने वाले तथाकथित जॉकी बन जाते हैं और इस तरह समाज में अव्यवस्था और अशांति को बढ़ावा मिलता है।
0: जैसा कि पहले हमने बताया था, 15 अक्टूबर और शुक्रवार 16 अक्टूबर को सभी प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के साथ साथ तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों और उच्च शिक्षा संस्थानों को बंद रखा जाएगा। इसमें केवल एक अपवाद है, स्कूल सर्टिफिकेट और हाई स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाएं, कैम्ब्रिज की परीक्षाएं देश की सभी परीक्षा केंद्रों पर सामान्य रूप से आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के संचालन और निगरानी के लिए जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है केवल उन्हीं को परीक्षा केंद्रों तक जाना होगा। शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने शैली निर्बन से इस बारे में जानकारी दी। उनको सुनते हैं, विवरण अशिता रघु का।

0: एग्जामिन जो स्कूल सर्टिफिकेट हायर स्कूल सर्टिफिकेट वो
1: जिन बच्चों को गुरुवार और शुक्रवार को स्कूल सर्टिफिकेट SC हायर स्कूल सर्टिफिकेट HSC परीक्षाओं में भाग लेना है वे परीक्षा केंद्र में जाएंगे तथा दूसरी ओर प्री प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी वोकेशनल स्कूल जैसे MITD ITET साइंस स्कूल और MI ये सब बंद रहेंगे पर जो कॉलेज एग्जामिनेशन सेंटर्स यानी परीक्षा केंद्र हैं वे सब कार्यरत रहेंगे इन परीक्षा केंद्रों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बात यदि करें तो जहां परीक्षा केंद्र हैं वहां हमेशा की तरह जिन लोगों की आवश्यकता है वे वहां पर जाएंगे कैम्ब्रिज परीक्षाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा अपनी सहायता प्रदान करने के लिए गौरतलब है कि जिन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जरूरत नहीं है उन्हें रिपोर्ट नहीं करनी होगी
2: तो प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी संस्थानें बंद अपनी किताबों के जरिए लोगों को जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए प्रेरित करने वाले मशहूर लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता श्री खेरा इन दिनों मॉरिशस में हैं कल उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की श्री खेरा इस शुक्रवार को एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे जिसमें मुश्किल हालात का सामना करने और अपने क्षमताओं को पहचान कर आगे बढ़ने पर चर्चा की जाएगी सहानों की रिपोर्ट
3: लेखक वक्ता और लीडरशिप के विशेषज्ञ शिव खेरा व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता पर आधारित अपनी पुस्तक यू कैन विन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ शिष्टाचार के नाते भेंट की इस अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के अनुसार युवा देश के विकास के लिए एक अहम ताकत हैं उन्होंने शिक्षा अनुशासन और नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया ताकि भविष्य के नेताओं को तैयार किया जा सके
4: There was a study done on 1,000 companies and it was found that 60% of these companies fired Gen Z within first few months of hiring. Communication skills, attitude, integrity, taking for granted, team spirit. People who have succeeded and they have sustained success and maintained goodwill, they have lived by this one principle and that is, I shall always give more than what I get. To my family, to my organization, to my company, to my customer and to my country. You live by this principle, you become the competition, you have no competition.
3: Shiv Khera is Shukravar, 16 October ko La Pirogue mein Mauritius Institute of Directors ki pehel par aayojit ek sammelan ka sanchalan karenge. जिसकी थीम होगी टर्निंग सेटबैक्स इनटू कमबैक्स द विनर माइंडसेट यानी असफलताओं को वापसी की सफलता में बदलना विजेता की सोच
2: करदाताओं यानी कि टैक्स पेयरों के लिए डेडलाइन अब बेहद करीब आ गई है आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अब केवल कुछ ही घंटे बाकी हैं MOD द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि गुरुवार 15 अक्टूबर की आधी रात है 13 अक्टूबर की सुबह तक प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 241,202 आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं हालांकि अभी भी हजारों करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है आयकर रिटर्न दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है करदाता कुछ ही क्लिक में MOD की आधिकारिक वेबसाइट MOD.MU के माध्यम से अपना रिटर्न कर सकते हैं ऐसे में आज शाम अंतिम समय में रिटर्न दाखिल करने के लिए टैक्सपेयरों से तेजी दिखाने की अपील की जा रही है यदि किसी करदाता को सहायता की आवश्यकता है तो MOD की हेल्पलाइन 207600 पर संपर्क किया जा सकता है शारदीय नवरात्र की पावन वेला जारी है आज पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा आराधना की जा रही है स्कंद माता को प्रेम ममता करुणा और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है उनकी पूजा करने से भक्तों को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है ऐसी मान्यता है विशेष रिपोर्ट अशिता रघु के साथ जिसने त्रिमूर्ति सोसाइटी बैतो काठबोन और काली मां मंदिर बासा रोड काठबोन का दौरा किया अपनी टीम के साथ

0: ये परंपरा पिछले 47 वर्षों से चली आ रही है। बैतूल की त्रिमूर्ति सोसाइटी इस वर्ष भी माँ दुर्गा भवानी के सम्मान में 9 दिवसीय श्री श्री दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। ये आयोजन बंगाली परंपरा पर आधारित है, जिसमें माँ दुर्गा का स्वागत परिवार में लौटने वाली बेटी के रूप में किया जाता है। इस भव्य आयोजन की तैयारियाँ जून महीने से ही शुरू हो गई थी।
1: हम लोग बंगाल मतलब कलकत्ता के हैं, वेस्ट बंगाल, और हम लोग कलकत्ता में हमारे बड़े पूर्वज लोग आए थे, उसी परंपरा से ये दुर्गा पूजा चल रहा है। हमारी दुर्गा पूजा पूरा बंगाली विधि से, और दूसरी बात ये कि ये दुर्गा पूजा तंत्र शक्ति से और तंत्र विधियों से होता है, तंत्र विधि से मतलब ये कि हमारी जो देवी हैं दुर्गा जो हैं, क्या वो महाकाली क्या वो दुर्गा जी हैं, वो सब तंत्र शक्ति से ही होता है। और इस शारद नवरात्रि में दुर्गा जी के हम लोग पूजा चंडी रूप में मानते हैं, मतलब कि चंडिका के रूप में। ऐसे दुर्गा माँ को सभी लोग माँ कहते हैं, लेकिन हमारे बंगाली परिवार में दुर्गा जी बेटी बन करके पिता के घर आते हैं। अभी वो हमारे साथ रहेंगे 10वीं तक, फिर 10वीं के बाद वो अपने पति के घर में जाएंगे। तो जाने से पहले जितनी भी सेवा हो सके विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं।

0: इस वार्षिक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मां दुर्गा की आराधना के दौरान भक्तों में विशेष उत्साह और भक्ति देखने को मिली।
1: क्योंकि छुट्टी से लेकर आज तक हम माँ की सेवा करते हैं और जैसे कि आपको पता है वो माँ के रूप नहीं आती, वो बेटी के रूप आती है, तो हम उसकी स्वागत धूमधाम से करते हैं और हर साल यही वेट करते हैं कि वो आए और हम उसकी सेवा करें।
0: सायंकालीन कार्यक्रम में पारंपरिक बंगाली ढुली नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहा। युवा कलाकारों ने ढाक नामक पारंपरिक ढोल की गूंज के बीच सुगंधित धूप से भरे पात्रों के साथ ये भक्तिमय नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं बासेर रोड स्थित काली मां मंदिर में भी नवरात्रि का विशेष आयोजन किया गया। पिछले 20 वर्षों से मंदिर में श्रद्धालु पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। रात में आयोजित विशेष कथा में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया और मां दुर्गा के नौ रूपों की लीलाओं का श्रवण किया। मंदिर का उद्देश्य युवा पीढ़ी तक हिंदू संस्कृति और परंपराओं को पहुँचाना है। इसके साथ ही मां दुर्गा की मूर्ति का पर्यावरण के अनुकूल निर्माण, प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का संदेश भी देता है।
2: जो नुवो जेनेरेशन बा ओकर मजा एनकरेज करना जैसा कि हमने के मजा आवे के संगे हम मूर्ति बनाए के हमने के गांव के मजा के रोशन करे के मंदिर के हमने के लास जाता नौजवान जो अब उठता छा मजा ई परंपरा स्वीप करे के।
0: दो स्थान आस्था की दो अलग अलग अभिव्यक्तियां, लेकिन उद्देश्य एक ही है, नवरात्रि की परंपराओं को जीवंत रखना और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना।

और विदेशी स्तर पर यूक्रेन के कुछ हथियारों की गति और स्पेस एक्स के स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क से उनके जुड़े रहने की क्षमता पर लगाई गई पाबंदियों के पीछे अमेरिकी सरकार का हाथ हो सकता है। ऐसा जो है एलन मस्क का कहना है, स्टारलिंक नेटवर्क यूक्रेन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इसकी मदद से कीव रूसी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का मार्गदर्शन करता है और अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा भी करता है। मंगलवार रात यूक्रेन ने कहा कि गति पर अचानक लगाई गई नई सीमाओं के कारण युद्ध क्षेत्र में उसके सैन्य अभियान प्रभावित हो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के एक सलाहकार ने कहा कि उनका मानना है कि ये पाबंदियां महज संयोग नहीं हैं। उन्होंने इन्हें कीव और वाशिंगटन के बीच हाल में बढ़े तनाव से जुड़ा

हुआ बताया। खबरों के अंत में मौसम की रिपोर्ट। मस्करिंस के दक्षिण में स्थित एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज हवा पाई जा रही है। अनुमान है सुबह के वक्त आसमान में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्लाटू पर जहां तहां बारिश हो सकती है। दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा लेकिन देर रात को पूर्व दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिराएंगे और जहां तहां बारिश हो सकती है। अन्य इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं लेकिन धीरे धीरे शाम के वक्त सुधार आएगा, स्थिति में सुधार आएगा। आज सूर्योदय हुआ 5:39 पर, सूर्यास्त होगा 6:11 पर।

0: खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। दुआ शांत रातों के बाद अब पूरे देश में शांति लौटती दिखाई दे रही। कम से कम आधिकारिक तौर पर कल रात किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली। कर्फ्यू कल रात भी लागू रहा और आज भी रात 8:30 बजे से कल सुबह 5 बजे तक दो अन्य इलाकों में भी कर्फ्यू लागू किया गया। कौचिमिलिते और सैंपिये प्रधानमंत्री ने कल इसका किया ऐलान। उन्होंने नाबालिगों द्वारा कर्फ्यू का पालन किए जाने पर दिया जोर। मॉरिशस में हुई हिंसा और नशीले पदार्थों की तस्करी के बीच संभावित संबंधों पर जांच, साथ ही ये भी समझने का प्रयास कि सामाजिक और आर्थिक समस्याएं किस तरह युवाओं को तस्करी के जाल में ढकेल सकती। सुरक्षा स्थिति के कारण स्कूल और शिक्षण संस्थान 15 और 16 अक्टूबर को बंद, लेकिन कैम्ब्रिज की परीक्षाएं देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर सामान्य रूप से आयोजित की जाएंगी। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना, जो प्रेम ममता करुणा और मातृत्व का प्रतीक। विदेश में यूक्रेन के कुछ हथियारों की गति और स्पेस एक्स के स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क से उनके जुड़े रहने की क्षमता पर लगाई गई पाबंदियों के पीछे अमेरिकी सरकार का हाथ हो सकता, ऐसा एलन मस्क का कहना रहा। 6:56 हो चुके, बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है सिर्फ के सहयोग से। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
0: Route Royale, canton Belle de Pamplemousse में 79 साल की 79-year-old कुमारी जयवंती मनबुदना जो सतवंती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान रॉयल रोड कांटों बेल डो पॉम्पलेमोस से उठाकर दाह संस्कार के लिए थ्रियोले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। सोल्फेरिनो नंबर 4 वाकुआ में 82 साल की 82-year-old श्रीमती बिंदुमती सिपरसाद, पैदाशी नाम रामनानन सिंह, जो मिला से जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे जगेसर लकराज सिंह के मकान सोल्फेरिनो नंबर 4 वाकुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए फिनिक्स की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। धनी लेन सैंपल में 40 साल की 40-year-old श्रीमती हेमा देवी डोमा, पैदाइशी नाम जुटन, जो अनुष्का से जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:30 बजे इनके पति अनूप डोमा के मकान धनी लेन सैंपल से उठाकर दाह संस्कार के लिए आलिब्रियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी।

0: cremation today at 10:30 a.m. La Chapelle Ardente Eliensons Bobaseme Tirasi Salki, 83-year-old, Srimati Pavitra Devi Bohran, Srimati Pavitra Devi Bohran, Pairajinam Bichu Kisundayal, जो सविता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल शुक्रवार को दिन के 11 बजे ला शापेल आउडों तेलियन सन्स बोबासे से उठाकर दाह संस्कार के लिए कोडेगाउत की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 p.m. ओटवायाल रिश्ते में 49 साल की 49-year-old श्रीमती शालिनी बिहारी, श्रीमती शालिनी बिहारी पैदाइश नाम रामचंद जो मुन से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी माँ माला माथुर रामचंद के मकान ओटवायाल रिश्ते से उठाकर दाह संस्कार के लिए वालिद फैत के स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 p.m. काहुलेन मोटाइलोंग में 68 साल की 68-year-old श्री प्रेमचंद लोलमान जो किशोर से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी पत्नी श्रीमती अनीता लोलमान के मकान काहुलेन मोटाइलोंग से उठाकर दाह संस्कार के लिए खैवकर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 p.m. रामनारायण गली कोटेज में 77 साल की 77-year-old श्रीमती सुकृति ठिकोई जो जयंती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे बिसुंदत धूरा के मकान रामनारायण गली कोटेज से उठाकर दाह संस्कार के लिए कोटेज की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 p.m. वेस्टर्न बाउंडेरी बोबासेन रोड काटोमोड में 48 साल के 48-year-old श्री कैलाश गोखुल जो महाज से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके मकान वेस्टर्न बाउंडेरी बासन रोड काथोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 a.m. और अविनी गनाजिन सिते सैन लुई पाई में 39 साल की 39-year-old श्रीमती मारी अनुष्का ओगुस्तिन पैदाइशी नाम लादूस की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं आज दिन के 2 बजे इनके पिता विक्टोर लादूस के मकान अविन्यू ग्रेनाजिन सिते सैन लुई पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाई की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2 p.m. शोकग्रस्त हैं सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और MBC के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बाटे नो ट्रावाई नो लावेनिया। रिटेल के सेक्टर में AN होमवेयर कंपनी लिमिटेड जोन रॉयल रोड पॉम्पलोमुसेस में पावल जाला एगो शेल्फ्स वर्कर खोजता जिकर HSC बाटे, साथ में खोजता एगो पैकिंग मशीन ऑपरेटर जिकर डिप्लोमा बाटे। एप्लीकेशन मॉरिशस जॉब्स पर करिया। जस्ती जानकारी खोजबा त टेलीफोनी करिया 243-43-39। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 16 अक्टूबर 2026। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में आग्री बिल्ड कंपनी लिमिटेड जोन विक्टोरिया रोड थ्रूदोदूस में पावल जाला एगो मासों ग्राद 2 खोजता जिकर 1 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर अपन CV ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है agribuildcmoltd@outlook.com न त टेलीफोनी करिया 59-26-65-66। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2026। कंस्ट्रक्शन के ही सेक्टर में गाराज वाटक कंपनी लिमिटेड जोन बैंक रोड गुडलैंड्स में पावल जाला एगो मासों ग्राद N खोजता जिकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। और खोजता एगो आलू

एल्युमिनियम फैब्रिकेटर जेकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोन करिया 282-47-47 नता अपन सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है vishal.santak@gmail.com एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 20 अक्टूबर 2026। पोल्ट्री फार्मिंग के सेक्टर में सनशा पोल्ट्री लिमिटेड जोन शेनफील्ड रोड रिविया जुरा पाव में पावल जाला एगो पोल्ट्री फार्म वर्कर खोजता जेकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर हाउजे पहुंच जाइया न त जे जस्ती जानकारी खोजब टेलीफोनिक करिया 59 44 99 33। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 23 अक्टूबर 2026। पोल्ट्री फार्मिंग के ही सेक्टर में जीजा फ्रेश चिकन लिमिटेड जोन शेनफील्ड रोड रिविया जुरा पाव में पावल जाला एगो पोल्ट्री फार्म वर्कर खोजता जेकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर हाउजे पहुंच जाइया न त टेलीफोनिक करिया 57 18 89 22। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 23 अक्टूबर 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में एस जे वुड एंड एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जोन वायल रोड पेटी राफ्रे में पावल जाला एगो कैबिनेट मेकर खोजता जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 57 85 26 85। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 23 अक्टूबर 2026। टेक्सटाइल के सेक्टर में कंपनी मोरिसियन दे टेक्सटाइल लिमिटेड जोन डीबीएम इंडस्ट्रियल जोन फिनिक्स में पावल जाला एगो 14 सीटर्स ड्राइवर वन खोजता जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और खोजता एगो सोफिया गुड व्हीकल जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे साथ में एगो प्लानिंग और लॉजिस्टिक ऑफिसर वो खोजता एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 600N 88 88 न त अपन सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है HR@admin@hq.cmt.mu न त हाउजे पहुंच जाइया एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 24 अक्टूबर 2026। रिटेल के सेक्टर में Le Warehouse Limited, John Saint-Vincent de Paul Street, Jacaria Lane, Pai me Powell Jala, Ego Shelf Worker Kojata Jekar Essi Sange, Du Bariskel Experience Bate. Application Mauritius Jobs Per Kardi Ha, Nata Je Justi Jankari Kojba, Ta 202-04-00 Telefoni Kariya. Application Karike Antim Tarik Ha, 26 Maniki 26 October 2026. कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में RBL Waterproofing Specialists Limited, जोन शिवाला लेन नुवेल फ्रांस में पावल जाला एगो कुक खोजता जेकर फोम कार्ड बाते एप्लीकेशन मॉरिशस जॉब्स पर करिया न त टेलीफोनिक करिया 677 मिल। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 अक्टूबर 2026। सिक्योरिटी सर्विसेज के सेक्टर में अलर्ट सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड जोन रू कुवेंट दे लोरेट ओकुले में पावल जाला एगो सिक्योरिटी गार्ड खोजता जेकर फॉर्म 3 बाटे और एगो सोफेयर जेकर फॉर्म 3 बाटे एप्लीकेशन करे खातिर हाउजे पहुंच जाइया न त जस्ती जानकारी खातिर टेलीफोनिक करिया 673-24-99 न त हाउजे पहुंच जाइया एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 अक्टूबर 2026। हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में The Residence Mauritius, John Coastal Road, Belmont में पावल जाला। एगो शेफ दे पार्टी खोजता जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एगो कोमी कुक पेस्ट्री, एगो स्टीवर्ड अटेंडेंट, साथ में एगो इलेक्ट्रिशियन जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एगो प्लंबियर जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एगो हैंडीमैन जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। साथ में एगो वाले, एगो पब्लिक एरिया अटेंडेंट एगो लॉन्ड्री अटेंडेंट जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे साथ में खोजता एगो रिसेप्शनिस्ट एगो पोर्टर एगो स्पोर्ट्स एंड लेजर एंटरटेनर एगो हेड वेटर जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एगो बारमैन जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और खोजता वेटर और वेट्रेस। एप्लीकेशन करे खातिर अपन सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है HR@theresidence.com न त इंटरव्यू खातिर हाउजे पहुंच जाइया जे जस्ती जानकारी खोजब त टेलीफोनिक करिया 400N 88 88। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 अक्टूबर 2026। एग्रीकल्चर के सेक्टर में अजय

0: The Two Company Limited, Jun Royal Road, Maltaba me pawal jala, ego agricultural laborer or sugar cane field laborer khojata. Application kare khatir, telephone kariya 57 96 21 15. Application kare ke antim tarikha 31 mani ki 31 October 2026. Job contractor ke sakte ami, Abdul Siddiq and Sons Company Limited, Jun Royal Road, Poncolville, Nouvelle France me pawal jala. Ego building construction helper khojata jekar dubar skill experience bate. Application kare khatir telephone kariya 58 25 80 04. Application kare ke antim tarikh 30 October 2026. Bakery ke sakte ami AI Hosen Company Limited, Jun Budden Street, Upper Vale me pawal jala. Ego bakery operator khojata jekar ek bar skill experience bate. Application kare khatir telephone kariya 58 63 48 99. Application kare ke antim tarikh 30 October 2026. Restaurant ke sakte ami Domaine de la Bourdonnais Limited, Jun La Bourdonnais, Mapu me pawal jala, ego jardinier khojata jekar form 3 bate. Application kare khatir telephone kariya 266 95 33. Application kare ke antim tarikh 30 October 2026. Recycling ke sekte ame The Mount Recycling Company Limited, Jun Latour ke nig me pawal jala, ego sofer khojata jekar 5 baris ke experience bate, sat me khojata ego helper aru ego machinist. Application kare khatir hauje pahunch jaiya, nata jasti jankari khatir telephone kariya 57 23 99 38. Application kare ke antim tarikha 31 October 2026. Retail ke sakte ami TW Stores Limited, Jun Corner Draper Avenue and Saint Jean Road, 4 Bonne, 72 109 me pawal jala. Ego helper khojata jekar form 3 bate, ego sales representative jekar SC bate, aru khojata ego admin and sales support jekar SC sange HSC bate. Application kare khatir telephone kariya 59 43 95 68 nata pan CV email dwara I pata par bida kar diha hr@techworld.mu nata sakba directly company ke website par apan application apan arzi bida kar de. Application kare ke antim tarikh 31 October 2026. Automotive ke sakte ami V Beacon Company Limited, Jun School Road, Cottage me pawal jala, ego heavy vehicle mechanic khojata jekar du baris ke experience bate. Application kare khatir telephone kariya 58 34 87 68. Application kare ke antim tarikh 6 November 2026. Je public sector me kaam khojata hua ta ee bhi sunte chala ki Public Service Commission ke tale Ministry of Finance, Corporate and Business Registration Department ego registrar of companies khojata. Application kare khatir e website visit kariya https://psc.gov.mu/. Application kare ke antim tarikh 20 October 2026. Rodrigues Regional Assembly Fisheries ego Fisheries Protection Officer khojata. Application Rodrigan candidates khatir khulal bate. The application kare khatir e website visit kariya https://psc.gov.mu/. Application kare ke antim tarikh 21 October 2026. Ministry of Arts and Culture, National Archives Department, ego archives officer cum senior archives officer khojata. Application kare khatir e website visit kariya https://psc.gov.mu/. Application kare ke antim tarikh 21 October 2026. Ministry of Arts and Culture, National Archives Department, ego reprographic operator archives khojata. Application kare khatir e website visit kariya https://psc.gov.mu/. Application kare ke antim tarikh 21 October 2026. Rodrigues Regional Assembly Judicial Services ego court officer khojata aru application Rodrigan candidates khatir khulal bate. Ta application kare khatir e website visit kariya https://psc.gov.mu/. Application kare ke antim tarikh 22 अक्टूबर 2026 मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पब्लिक यूटिलिटीज एगो इंजीनियर कम सीनियर इंजीनियर खोजता आप्लिकासो करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://pse.gov.org/ और वो आप्लिकासो करे के अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2026 मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड इनोवेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डिवीजन एगो कंप्यूटर सपोर्ट ऑफिसर कम सीनियर कंप्यूटर सपोर्ट ऑफिसर रोस्टर खातिर खोजता आप्लिकासो करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://pse.gov.org/ आप्लिकासो करे के अंतिम तारीख 29 मानी की 29 अक्टूबर 2026 मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड इनोवेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डिवीजन एगो नेटवर्क कम सिस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिस्ट खोजता आप्लिकासो करे खातिर ए वेबसाइट विजिट करिया https://pse.gov.org/ और आप्लिकासो करे के अंतिम तारीख 29 अक्टूबर 2026 और लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन के तले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ लाक कोइचे विलेज काउंसिल एगो पार्ट टाइम सब होल अटेंडेंट खोजता आप्लिकासो करे खातिर ए वेबसाइट विजिट करिया https://ljsc.gov.org/ आप्लिकासो करे के अंतिम तारीख 22 अक्टूबर 2026 और ये भी सुनते चला कि प्राइवेट हाउसहोल्ड के सेक्टर में गुडलैंड्स के रिजो खातिर एगो हाउसकीपर कम हाउसहोल्ड एम्प्लॉय के खोज बाटे तो आप्लिकासो करे खातिर गुडलैंड्स EIC टेलीफोनी करिया इन नंबर पर 22 59 17 2 59 18 और बेलव्यू मोगल में एगो हाउसमेट खोजल जाता तो आप्लिकासो करे खातिर रिविया जुआ पर EIC टेलीफोनी करिया 412 69 25 तो ये रहल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और OMBC के मिलल जुलल सहयोग से नू ट्रावाय नू लावेनिया
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस 819 KHz ये है रेडियो मॉरिशस
2: श्रोताओ स्टूडियो की घड़ी में 7:15 बज रहे हैं आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी सबसे पहले फ्लोगयाल के रहने वाले निवासियों को जिनमें है एवेन्यू किंग जॉर्ज एवेन्यू जॉन केनेडी रू रोजे पेजानी रू एस्केट बेल फ्लैट सिल्वर क्लाउड्स फ्लैट लेटेनेट्स रेजिडेंस दे लेटेंडेंस ब्रिटिश हाई कमीशन फ्लैट करेमजी के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 16 अक्टूबर 2026 को दिन के 12 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी फ्लोरियाल के रहने वाले निवासों को जिनमें है रू एनस आगर के कुछ भागों के रहने वाले निवासों को साथ में है लुशे दु साजाय फ्लैट हेस्केट हाइट्स के रहने वाले निवासों को शुक्रवार 16 अक्टूबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी क्यूपिप के रहने वाले निवासियों को जिनमें है रू पप एनएसए के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को रू जॉडे रू कोसी रू रेमोनो कॉलेज लेन रू डॉक्टर एडवर्ड रू विक्टोर लामार्क रू गायतन जुवाल रू नाज रू एमिल सोजिए रू सर विलियम न्यूटन रू राफ्रे मार्सेल पियात के रहने वाले निवासों को गुरुवार 15 अक्टूबर 2026 को दिन के 1 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे के बीच साथ में है फिकॉन फ्लाक के रहने वाले निवासों को जिनमें है एवेन्यू मुलेकासे एवेन्यू दे फ्री एवेन्यू दे माओलें एवेन्यू दे मेरू और एपास बेक्यूम के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 16 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर सपहर के 3:30 बजे के बीच और अंत में है बोसोंज के रहने वाले निवासों को जिनमें है विलाज दे बोसोंज मार्सेलमा दुकन से डब्ल्यूएआ बोसोंज एनएसडीसी बोसोंज और से डब्ल्यूएआ पंपिल से डुब्लेवा पंपिंग बुसोंच के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 15 अक्टूबर 2026 को सुबह 9:30

0: 9 बजे से लेकर दिन के 12 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी इन सभी जगहों पे, और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: तो चलिए श्रोताओं, सुबह का नज़ाना कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है इस समय। वैसे सुबह 6 बजे से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ निभाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। एक और गुरुवार, नया दिन, नई शुरुआत MBC रेडियो के साथ। आज है 15 अक्टूबर 2024। सुबह का नज़ाना कार्यक्रम इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाली है। किसी ने क्या खूब कहा है, न सूरज से सीखिए केवल चमकना, फूलों से भी सीखिए चुपचाप महकना। तो आइए इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं श्रोताओं चिंतन के साथ। चिंतन डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलना जरूरी होता है। जो सच के साथ चलता है, वक्त उसी के साथ होता है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: Ou toujours pas encore faire au Individual Income Tax Return 2026? Vous connaissez aujourd'hui, dernier jour pour faire au return? Pas tarder. Allo site web de la MRE, www.mre.mu. Clique le e-filing season 2026 et suivez ban instruction. Si vous avez besoin d'aide, prenez rendez-vous le e-appointment, un officier de la MRE pour aider ou remplir au return à travers un WhatsApp video call. Après que vous finissez de soumettre au return, vous êtes capable de participer dans le Taxpayer Satisfaction Survey et remporte un des 23 prix là. Premier prix, 25 000 roupies. Deuxième prix, 15 000 roupies. Et troisième prix, 10 000 roupies. Faire vite, remplir au return avant le 15 octobre. Passez ce délai pour risquer une pénalité et l'intérêt.
0: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: स्पोर्ट्स न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीमियर लीग लीडर मैनचेस्टर सिटी, जो कुछ दिन पहले लिवरपूल को 3-0 से हराकर फरफरा रहा था, उसको जमीन पर उतारा पारी सेंट जर्मेन ने। सिटी के घर में घुसकर पारी सेंट जर्मेन ने 4-2 की जीत हासिल की। फर्स्ट हाफ में 3-0 डुए, डेम्बेले और वितिन्हा स्कोर कर पाए। फिर सेकंड हाफ में अर्लिंग अलोंग का डबल, इससे पहले अक्यूशे के ने पारी सेंट जर्मेन का चौथा गोल स्कोर किया। चैंपियंस लीग के चैंपियन पारी सेंट जर्मेन की ओर से मास्टर क्लास परफॉर्मेंस। लिवरपूल और एस्टन विला जीत पाए, वो भी 6-6 गोल स्कोर करके। LAS के 3, लिवरपूल 6, बाकोला का हैट्रिक, आहोयो, फ्रिंकपोंग और कुमास भी स्कोर कर पाए। फर्स्ट हाफ में स्कोर 3-0 था लिवरपूल के हक में। एस्टन विला की ओर से बमबारी, 6-0 से फेनेरबाचे को तहस नहस कर डाला। इस धुलाई में जैक्सन और बाकले की ओर से 2-2 गोल, मानजाम्बी और अब्राहम भी स्कोर कर पाए। इस सीजन अपने मैदान में ये विला की पहली जीत है। रियल मैड्रिड के लिए कमबैक विन, रेमोंटादा 3-1 से रियल मैड्रिड की हार हो रही थी एएस रोमा के मैदान में, पर मैच के अंतिम 10 मिनटों में 3 गोल स्कोर करके रियल मैड्रिड कीमती जीत छीन लेता है। किलियान एम्बापे, कॉलोस एसपी, एंड्रिच और रूडिगर स्कोरर रहे। अन्य मैचों में फेयेनोर्ड 3, कोमो 2, बोडोग्लिंट 1, बोरुशिया डॉर्टमुंड 0, बेटिस 3, पोर्टो 2, शाख्तार डोनेत्स्क 3, एके एथेंस 1, स्लोवान 0, स्टुटगार्ट 3। 2 मैचों के बाद पारी सेंट जर्मेन, बार्सिलोना, एस्टन विला, स्टुटगार्ट, लिवरपूल, स्पोर्टिंग, आर्सेनल, रियल मैड्रिड और बेटिस के पास मैक्सिमम 6 अंक है। मैनचेस्टर यूनाइटेड 13वें पोजीशन पर है, 13th पोजीशन, उसके पास है 3 अंक। अगले 20 अक्टूबर को इस एक धमाकेदार टकराव होगा, पारी सेंट जर्मेन वर्सेस बार्सिलोना। उसी दिन लिवरपूल, विलारियल, मैनचेस्टर सिटी एके एथेंस, मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएगा कोमो के मैदान में। एस्टन विला का मुकाबला होगा विकी

टीम से ये अगले हफ्ते के मैच होंगे। आज यूईएफए यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग के मैच खेले जाएंगे। इनमें लियो क्रिस्टल पैलेस का स्वागत करेगा, साल्सबर्ग एसी मिलान, फिर टोरेंस टीम सन्डरलैंड के खिलाफ, बोर्नमुथ स्टुमकास, बेनफिका सेल्टिक, सेल्टा विगो यूवेंटुस,

0: चैंपियनशिप में कल नोविच को हराया साउथम्पटन ने 1-0 से, पोर्टसमुथ 3 शेफील्ड यूनाइटेड 2, क्वींस पार्क रेंजर्स 4 डर्बी 1 और वेस्ट हैम यूनाइटेड ने लिंकन को 6-0 से पछाड़ा। इंडियन सुपर लीग में पंजाब की जीत 2-1 से ओडिशा पर। मैनचेस्टर यूनाइटेड के खराब परफॉर्मेंस से लिजांड्रो मार्टिनेज ने गुस्से में आकर क्लब के मैनेजमेंट और खासकर टेक्निकल डायरेक्टर पर टूट पड़ा। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन में मार्टिनेज ने कहा कि टीम को मजबूत बनाना चाहिए था, अच्छे खिलाड़ियों को खरीदना था, खासकर जब कोई इस साल कई साल बाद यूनाइटेड चैंपियंस लीग में खेल रहा है। डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल जेसन विलकॉक्स पर ऐसी बातें करना शायद उसके दिन अब गिने जा रहे हैं। टेनिस, शंघाई मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे जुडा, कास्पर रूड, मेदवेदेव और पोल। आज क्वार्टर फाइनल में अलेक्जेंडर वेरेव का मुकाबला बेमिनो से होगा, रिया खेलेगा फोकिना के खिलाफ। इधर वुहान ओपन में इगा श्वातेक, मुचोवा, ओस्तापेंको, आनली वितोलिना, फर्नांडेज, पाउलिनी आदि जीत पाए। सबालेंका को हराया आनली ने। और क्रिकेट में टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच T20 सीरीज का फैसला आखिरी मैच में होगा। कल चौथे मैच में वेस्ट इंडीज ने भारतीय टीम को 24 रनों से हराया। श्राई होप की ओर से सेंचुरी और किमोपोल 5 विकेट ले पाया। अब पांचवा निर्णायक मैच परसों शनिवार को बेंगलुरु में खेला जाएगा। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

चलिए श्रोताओं, कहते हैं कि सच्चा दर्पण वह नहीं जो हमें हमारा चेहरा दिखाए, क्योंकि वह है जो हमें हमारा असली व्यक्तित्व पहचानना सिखाए। 7:36 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। ये है सुबह का नज़ाना कार्यक्रम, आपके नाम हम कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फ़ोन कॉल्स के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए श्रोताओं, सुबह का ये बहुत ही प्यारा सा नज़ाना आपके नाम हम कर रहे हैं चंद पुराने नगमे आपके लिए। अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। फिल्म का नाम है संबंध, पुराना गीत मुकेश और साथियों की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कुछ सफर अकेले तय करने पड़ते हैं ताकि हम अपनी ताकत और अपने अस्तित्व को पहचान सके। और अकेलापन जो है अपनी कमजोरी नहीं, अपनी पहचान बनाइए। खामोशों के बीच भी मुस्कुराइए और जीवन को गुनगुनाइए। तो चलिए, सुबह का नज़ाना कार्यक्रम आपके नाम हम कर रहे हैं। चलिए एक और प्यारा सा गीत आपके लिए मुकेश की आवाज़ में, और बढ़िया सा गीत जो है पुरानी फिल्म से लिया गया, और ये पुरानी फिल्म है तीसरी कसम।

नाश करने से पहले हमें अपने भीतर इंसानियत का दीप जलाना चाहिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में उम्मीद बन जाना भी एक खूबसूरत नेकी है।

8 बजल बा पेश बातिया भोजपुरी समाचार। सब लोग के नमस्ते, भोजपुरी समाचार में आप लोग के स्वागत करते हैं। जा सबसे अगते स्थानीय खबर, दुगो बेहद अशांत रात के बाद अब देश में शांति लौटते प्रतीत हुआ था। काल रात के कुनो बड़ा घटना की सूचना नहीं बाती। सरकार स्थिति के नियंत्रित करे खातिर टापू के कई गो क्षेत्र में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करे के फैसला लेने बाते। इकौच मिलते और सैपिय पर भी कर्फ्यू लागू रही। ई कर्फ्यू अब सुख तक बढ़ा डिवल गलबाते रात के 8:30 से फजीर के 5 तक। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुला माता पिता और बड़ा बुजुर्ग लोग से अपील करलन कि वो लोग सुनिश्चित करियन जा कि नाबालिग लोग कर्फ्यू के नियम के पालन करियन जा। अपराध करे के स्थिति में नाबालिग के कानूनी उम्र पर गौर करे खातिर एगो प्रस्ताव इसुक के मंत्रिमंडल के बैठक में पेश करल जाए। प्रधानमंत्री उमौरशन लोग के धन्यवाद दिलन जे लोग कर्फ्यू के पालन करलन जा। वो शांति बनाए रखे के अपील करे होला लोगन और कई गो इलाका में पुलिस के सहायता करे होला के भी सराहना करलन। वो बोलन कि आवश्यकता पड़ला पर पुलिस और SMF जस्टिस सख्ती से कार्रवाई करियन जा। बकिर हर परिस्थिति में विवेक और सूझबूझ संगे निर्णय लेके चाही। सार्वजनिक व्यवस्था के बिगाड़े हुला घटना के पीछे दूर से काम करे हुला कुछ गुप्त ताकत के हाथ होय के दावा करल जात बा। गौरतलब है कि काल ई घटना के सिलसिला में 93 जना के गिरफ्तार करल गल। एगो खास मंत्रिमंडल के बैठक के बाद सरकार अशांति फैलाई होला के खिलाफ कार्रवाई और सख्त करे के निर्णय लेलक। अब गिरफ्तार करल गए लोगन के खिलाफ आतंकवाद के रोकथाम से संबंधित कानून के तहत भी मुकदमा चलावल जा सके। हिंसक घटना में बड़ी संख्या में नाबालिग के कथित संलिप्तता के देख के सरकार चिल्ड्रंस एक्ट में संशोधन करे पर भी विचार करता। इस प्रस्ताव के उद्देश्य उम्र के 14 से घटा के 12 करे के है, जिन उम्र से नाबालिग के हिरासत में रखल जा सकी और उलो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करल जा सकी। इस खबर के पुष्टि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम करलन। एगो दूसर महत्वपूर्ण कदम के तहत आधा रात से गालन के हिसाब से ईंधन खरीदे पर सख्त प्रतिबंध लगा देवल गल बा। अब इस सुविधा खाली पेशेवर काम करे होला लोगन खातिर उपलब्ध रही। एकर खातिर ओकरा पहचान पत्र और अपन काम से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे के परी और निर्धारित न्यूनतम मात्रा संबंधी शर्त के पालन करे के रही। एकर अलावा पुलिस के साइबर अपराध इकाई सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखता। नफरत फैलाए होला भाषण या हिंसा खातिर उकसाए होला पोस्ट प्रकाशित करे होला लोगन के खिलाफ तत्काल जांच शुरू करल जाए। शिक्षा क्षेत्र के बात करब जा तो देश के सब सरकारी और निजी विद्यालय आज और काल बन बाते। उच्च शिक्षा संस्थान भी ई निर्णय प्री प्राइमरी से लेके माध्यम

माध्यमिक स्तर तक के सब संस्थान पर लागू हुई। इस कारण ग्रेड 4, ग्रेड 5 और NCE के परीक्षा स्थगित कर देवल गलबा। हालांकि इस सप्ताह निर्धारित SC और HSC की परीक्षा अपन तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित करल जात बाते। और सोमवार के फजीरे बीच बल्कि सोमवार से बुधवार के बीच पूरा द्वीप में आके लपटा लगभग 11,000 टन गन्ना के नष्ट कर देले बाते। बेकाबू आग के घटना से कटाई के मौसम के बीच पूरा कृषि क्षेत्र के भारी नुकसान हो बाते। आंकड़ा स्थिति के गंभीरता के स्पष्ट करता चांबव एग्रीकल्चर के अनुसार प्रभावित खेत में चीनी के उत्पादन लगभग आधा हो जाए की आशंका बाते। सामान्य तौर पर जहां करीब 1,000 टन चीनी के उत्पादन हो की उम्मीद रहल हो, जब ई घट के लगभग 500 से 800 टन रह सके। खेत में काम करे हुला गन्ना उत्पादक और मजदूर खातिर नुकसान बेहद गंभीर है। वो लोग जल्दबाजी में जरल गन्ना की कटाई के करे के परी भारी आर्थिक नुकसान के सामना करे के परल जाता और गैर जिम्मेदाराना कृत्य के कारण उलोग के 2026 के गन्ना कटाई और चीनी उत्पादन अभियान प्रभावित होल बाती। मॉरिशस में होल हिंसा और तोड़फोड़ एगो अहम सवाल खड़ा कर देले बाती। नशीला पदार्थ के तस्करी संगे एकर वास्तविक संबंध कौनसी है, इस सवाल के जवाब जाने खातिर जांच के निष्कर्ष के इंतजार करे के चाहिए और घटना स्थल से जुटावल गल जानकारी की पुष्टि करे के पड़ी। एकर उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझे के है कि इस घटना में शामिल लोगन और मादक पदार्थ की तस्करी करे हुला गिरोह के बीच संबंध कुंची है। बिना जल्दबाजी में कोनो निष्कर्ष निकाले बकिर जुन संबंध के पुष्टि अभी बाकी बातें कर से आगे एगोर सवाल उठेला। नशीला पदार्थ के तस्करी लगातार काहे बढ़ता, गल कुछ महीना में नशीला पदार्थ के तस्करी के खिलाफ कई गो कार्रवाई अभियान चलावल गल। कुणाल नायक अनुसार जिनकी नाडक के CEO हवन समस्या के मूल कारण पर भी विचार करे के चाहिए। तस्कर सामाजिक असमानता, विकास के कमी और आर्थिक तंगी के फायदा उठा के ऐसा युवा के अपने जाल में फंसाए सकी जिलों के उचित मार्गदर्शन और सहारा की कमी बातें। एकर परिणाम स्वरूप कुछ युवा नशीला पदार्थ के तस्करी के जाल में फंस जालन जा जिकर असर पूरा समाज पर पड़ेला। और ये जैसे कि बोलनी जा 15 अक्टूबर शुक्रवार 16 अक्टूबर के सप्री प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल संगे संगे तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र और उच्च शिक्षा संस्थान के बंद रखल जाता। एक में खाली एगो अपवाद SC और HSC के परीक्षा, कैम्ब्रिज के परीक्षा, देश के सब परीक्षा केंद्र पर सामान्य रूप से आयोजित करल जाता। ये परीक्षा के संचालन और निगरानी खातिर जे कर्मचारी के ड्यूटी पर लगावल गलबा खाली उही लोग के परीक्षा केंद्र तक जाए के चाहिए। टैक्स पेयर खातिर अंतिम डेडलाइन अब बेहद करीब आगल बाते। आयकर रिटर्न दाखिल कराए खातिर अब खाली कुछ ही घंटा शेष बाते। MOU द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि गुरुवार 15 अक्टूबर के आधा रात की है। अपन किताब के जरिए लोगन के जीवन में आगे बढ़े के और सफलता पाए खातिर प्रेरित करे होला मशहूर लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शिव खेरा आजकल मॉरिशस में हवन। कालू प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम संगे मुलाकात करलन। शिव खेरा इसुक के एगो सम्मेलन के संबोधित करियन जिकर में मुश्किल हालात के सामना करे के और अपन क्षमता के पहचान के आगे बढ़े पर चर्चा करल जाए। शारदीय नवरात्र के पावन वेला जारी बाते। आज पांचवा दिन स्कंदा माता की पूजा आराधना करल जाबा। स्कंदा माता के प्रेम, ममता, करुणा और मातृत्व के प्रतीक मानल जाला। उनकर पूजा करला से भक्तन के सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हुएला। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भल। आप लोग के ध्यान खातिर बहुत ही धन्यवाद। शोक समाचार सुनज।

महजानी रोजबेल में 42 बरिस के काहुंडेजों के श्री महेश योगेश कुन्नी, श्री महेश योगेश कुन्नी जो जेगो से जान जिगनकरा लोग जेगो से जानत रलन जा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकर्मा के मकान माघीजानी रोजबेल से उठा के दाह संस्कार खातिर माघीजानी के स्मशान भूमि ले जाल जाए। सोल्फेगिनो नंबर 4 वाक्य में 81 बरिस के काथोवैनो के श्रीमती बिंदुमती जगेसर, श्रीमती बिंदुमती जगेसर पैदाइश नाम सिपर साद जिनकरा लोग मिला से जानत रलन जा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी जोन बातें आज दिन के 11 बजे जिनकर बेटा अविनाश जगेसर के मकान सोल्फेगिनो नंबर 4 बाकवा से उठा के दाह संस्कार खातिर फिनिक्स के शमशान भूमि ले जाल जाए। और भी बासे रोड वेस्टर्न बाउंडेरी बासे रोड काथोबोन में 48 बरिस के काहौचवीतों के श्री कैलाश गोखुल, श्री कैलाश गोखुल जिनका रालोग महाज से जानत रलिंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकर मकान बाउंडेरी रोड बल्कि हाँ वेस्टर्न बाउंडेरी बासे रोड काथोबोन से उठा के दाह संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जाल जाए। रामनारायण गली कोटेज में 77 बरिस के स्वसंजितों के श्रीमती सुकरावती थी कोई, श्रीमती सुकरावती थी कोई जिनकरा लोग जयंती से जानत रलन जा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर मकान इनकर बेटा बिसुंदत ढोरा के मकान रामनारायण रोड कोतेज से उठा के दाह संस्कार खातिर कोतेज के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। काहुलेन मोटाइलोंग में 68 बरिस के स्वासंतवीतों के श्री प्रेमचंद लोलमान जिनका रलोक किशोर से जाने तरलन जा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर पत्नी श्रीमती अनीता लोलमान के मकान काउलेन मोटाइलोंग से उठा के दाह संस्कार खातिर खैफ के स्मशान भूमि ले जल जाए। ओटवायाल रिश्तिया में 49 बरिस के काहौत नेवों के श्रीमती शालिनी बिहारी पैदाइश नाम रामचंद जिनका रालोग मुन से जानत रलन जा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर माला माथुर रामचंद के मकान गोटवायाल रिश्ते से उठा के दाह संस्कार खातिर बालीदे फैत के शमशान भूमि ले जाल जाए। लाशापेल औदों तेलियंसंस बोबासम में 43 बरिस के बल्कि 83 बरिस के काथों थवाजों के श्रीमती पवित्र देवी बहुरन पैदाइश नाम बिचू की सुनुयाल जिनकरा लोग सरिता से जानत रलन जा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी काल सुख के दिन के 1 बजे इन लाशापेल औदों तेलियंसंस बबासे से उठा के दाह संस्कार खातिर कोडेगौत के शमशान भूमि ले जाल जाए। धनी लेन सैपोल में 40 बरिस के काहौतों के श्रीमती हेमा देवी दुमा पैदाइश नाम जूतन जिनकरा लोग अनुष्का से जानत रलन जा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 10 बज के आधा इनकर पति अनूप डोमा के मकान धनी लेन सैंपल से उठा के दाह संस्कार खातिर आली भियों के शमशान भूमि ले जाल जाए। ओटवायाल कौटों बेल्डू पॉम्पलेमुस में 79 बरिस के स्वसंजीज देवों के श्रीमती जयवंती मनबुदुना जिनका रालोक सतवंती से जानत रलन जा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकर मकान गुटवायाल कौतों बेल्डो पॉम्पलेमुस से उठा के दाह संस्कार खातिर थियोले के शमशान भूमि ले जाल जाए। शोक में डूबल इस सब परिवार लोगन के प्रति हमने की गहरा सहानुभूति बातें।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए श्रोतियों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 8:17 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। हम आपके लिए चंद ड्यूएट्स गाने मुकेश और शारदा की मीठी आवाज़ों में, बहुत ही प्यारा सा ड्यूएट जो है आपके लिए, फिल्म का नाम है अराउंड द वर्ल्ड।

तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम है अराउंड द वर्ल्ड। राज कपूर की अदाकारी, खूबसूरत विदेशी नज़ारे और शंकर जयकिशन का सुरीला संगीत, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को एक यादगार सिनेमाई सफ़र बनाया। ये फिल्म जो है हमें याद दिलाती है कि सफ़र केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि नए अनुभव, नई मुलाकातें और खूबसूरत यादों को अपने साथ समेटने का नाम भी है। तो चलिए गीतों का यह खूबसूरत सफ़र इसे आगे बढ़ाएंगे और अब की बार आप सुन सकेंगे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की मीठी आवाज़ों में ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत लोकप्रिय गीत।

के लिए चंद खूबसूरत गाने अभी आपने 1968 की मूवी फिल्म अभिलाषा से लिया गया है, बहुत ही लोकप्रिय गीत वाह दियो मेरा दामन, इस गाने को सुन रहे थे। चंद सदाबहार गीत आपके नाम इस समय हम कर रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे, स्टूडियो की घड़ी में 8:30 बज रही है। तो चलिए गीतों का एक खूबसूरत सफ़र से हम आगे ले जा रहे हैं, ये कार्यक्रम जो है 8:50 पर तक चलने वाला।

तो चलिए श्रोताओ, बहुत ही बढ़िया सा गीत है, बम्बई का बाबू फिल्म से लिया गया गीत। अभी आपने सुना आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की मीठी आवाज़ों में एक से बढ़कर एक तराने, बेहतरीन गानों में से एक गाना जो है अभी आपने सुना। तो चलिए श्रोताओ, खूबसूरत गीतों का ये कार्रवाई से हम जारी रख रहे हैं। अगला गीत फिल्म का नाम है दूर का राही, फिल्म से लिया गया किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित की मीठी आवाज़ों में।

चलिए श्रोताओ, बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्मी दुनिया की बात हम कर रहे हैं इस समय। फिर वही दिल आया 1963 की एक खूबसूरत हिंदी फिल्म है, जिसमें जॉया मुखर्जी और आशा पारेख की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म है, रोमांस संगीत, खूबसूरत वादियों और दिल को छू लेने वाली भावनाओं का सुंदर संगम देखने को मिलता है। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही बढ़िया सा गीत अभी आपने सुना। वैसे कुछ फिल्में केवल पर्दे पर कहानी नहीं सुनाती श्रोताओं, बल्कि दिल के किसी कोने में अपनी जगह बना लेती है। फिर वही दिल लाया हूँ भी ऐसी ही एक फिल्म है जिसकी मधुर धुनें आज भी सुनने वालों को पुराने दिनों की यादें जो है दिला लेती है। तो चलिए एक अंतिम नजाना आपके नाम, बहुत ही प्यारा सा गीत, फिल्म जो है गीत गाया पत्थरों ने और इस फिल्म का ये टाइटल ट्रैक आप आशा भोंसले और महेंद्र कपूर की मीठी आवाज़ों में सुन पाएंगे।

0: सभी श्रोताओं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं 8:50 समय आप सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम का समय पूरा हो चला।
1: Les grands matchs vous attendent sur NBC Play avec le NBC Play Sports Pack pour seulement 299 roupies par mois et surtout sans engagement, sans abonnement. Pour profiter du Sports Pack, ouvrez l'application NBC Play et rendez-vous dans la section TV. Dans la section TV, sélectionnez l'une des chaînes New World TV. Un message vous invitera à recharger votre compte. Cliquez sur « Recharger », sélectionnez votre forfait, puis procédez au paiement. Vous serez redirigé vers une plateforme de paiement sécurisée. Sélectionnez votre mode de paiement préféré et complétez la transaction. Une fois votre paiement validé, vous aurez accès aux chaînes New World TV dans la section TV de l'application. Vous pouvez désormais profiter de vos matchs préférés en direct sur votre mobile, tablette, ordinateur ou Android TV. NBC Play Sports Pack, les grands matchs sont ici. Pour plus d'informations, appelez le 402-8000.
0: चलिए श्रोताओं बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर, हमारी धरोहर किरण जानकी की प्रेस ड्यूटी में।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने चली जा देश के दक्षिण के ओर पॉइंट डिस्नी घोंपो में, और पॉइंट डिस्नी घोंपो ये सब इलाका के जब बात करबा तो हमने के इतिहास से जुड़ल एगो जगह याद आवेला जो ये घोंपो में पावल जाला, और उकर पर आज हमने के कार्यक्रम रही। वहाँ पर एगो हिस्ट्रिक और नेचुरल हेरिटेज बा जहाँ पर देश में जनता लोग रलन जा, उ लोग उतरल रलन जा। बात करत है जा 1598 में जब डच लोग के 5 जहाज पहला हला घोंपो के तट पर पहुँचल रहल। ये सब जहाज के जो मारे लोग रलन जा, जो नौ सैनिक लोग रलन जा, उ लोग स्कर्वी से पीड़ित रलन सा। स्कर्वी एगो ऐसा बीमारी है जो तब होवेला जब आप विटामिन सी नहीं खात हवा, ताज़ा फल सब्जी आपके नहीं मिलता, और आगे के समय में ये जो मागे लोग रलन सा, वो लोग जब सफ़र पर निकल रलन सा तो उ लोग के कितना समय तक जो ताज़ा फल सब्जी बा वो नहीं मिले, रूखा सूखा खात रलन सा, ये वजह से उ लोग के स्कर्वी हो जात रहल। तो जब ई स्कर्वी से पीड़ित जहाज घोंपो पहुँचल तो हुआ पर बहुत उम्मीद बढ़ गल ये सब सैनिक लोग के, कहे कि वो लोग समझ लन जा कि अब एगो टापू पर वो लोग उतरत हवन सा, यहाँ पर वो लोग के पानी मिली, फल मिली, सब्जी मिली। तो 1598 1498 में जहाज के कमांडर वॉविक रहल घोंपो के वो नाम देलन वॉविक हेवन। तब से डच के आवाजाही लगे लगल मॉरिशस में, और 1638 में डच मॉरिशस में आके बस गैलन सा ये सब इलाका में, पॉइंट डिस्नी, इल दे ला पास, इलो फुके, इलो वाक्वा, सुफ्लेर के आसपास भी, रिविया दे जांगी, बेदुजा कोते में। और गवर्नर पीटर द गुयेर के बोल गल कि घोंपो सबसे बेहतर जगह बा उ लोग खातिर, कहे कि यहाँ पर जहाज़ के मरम्मत आसानी से होई, यहाँ पर उ लोग से कैंसर शिकार करे, खेती बाड़ी खातिर भी ये जगह अच्छा बा। तब पीटर गुयेर यहाँ सबसे आगे एगो फोर्ट बनवेलक अपन सुरक्षा खातिर, अपन घर खातिर, 6 ऊंचा और 60 चौड़ा फोर्ट के भीतरे उनकर लॉज बनावल गल, उनकर घर 6 लंबा और 18 चौड़ा। यहाँ गवर्नर के संगे जो नौसैनिक लोग रलन सा, सेलर्स लोग, और उ लोग के संगे जे भी रहल उ लोग रहत रलन सा। यहाँ घर के संगे खाना पीना के एगो गोदाम।

0: काम बनावल गल, कानों और कितने औजार भी यहाँ पर रखा गल। अभिले हुआ फोर्ट फ्रेडरिक हेंड्रिक जेबा तो इस सब फोर्ट और महल और कानों के अवशेष पैबा। और यहाँ पर जब डच लोग अलन सा तो लोग के संगे उ लोग के गुलाम लोग भी रहल, तो गुलाम लोग खातिर भी जगह बनावल गल। आज यहाँ जेबा तो एगो म्यूजे बा, एगो म्यूजियम जेके नाम देवल गल बा फोर्ट फ्रेडरिक हेंड्रिक और वैन डर स्टेल द्वारा 1642 में ई फोर्ट बनावल गल। और प्रिंस मॉरिस दे नासो के ई भाई रहल फोर्ट फ्रेडरिक हेंड्रिक के, जेकर नाम पर ई फोर्ट के नाम रखा गल। प्रिंस मॉरिस दे नासो ही हमनी के मुल्क के मॉरिस नाम देलक। और भले ही यहाँ दो हला फोर्ट बनावल गल, लेकिन ई कबो इतना मजबूत नहीं रहल, कहे कि यहाँ औजार और सैनिक बहुत कमती रहल। अब यहाँ मॉरिशस तो एगो ट्रॉपिकल देश है, यहाँ तूफान हरर को चलावे, तो तूफान के वजह से यहाँ पर बहुत तबाही मचत रहल। और फिर फ्रेंच लोग भी यहाँ पर आए लगलन सा, एबोनी के व्यापार करे लगलन सा, जेकर व्यापार डच लोग करत रहल। अब दूसरा बात तो यह है कि यहाँ पर जो डच लोग रहलन सा, जो गुलाम लोग रहलन सा डच के आनल, वो गुलाम लोग हमेशा बगावत पर उतरावत रहलन सा, और बगावत के तौर पर वो लोग ई फोर्ट पर आग लगा देवत रहलन सा। तो डच लोग परेशान होके मॉरिशस में भले ही बसे के प्रयास कर लन सा, लेकिन उन लोग के पर छोड़ के ई देश चल जाएगी। आप जाने ला परले हवा इतिहास में कि पहला बात जब बोल गल बा कि हमने के मॉरिशस के जो डोडो पक्षी रहल वो कैसे मरल, तब बोल जला कि डच लोग ही ओके मोइलन सा। और साथ में डच लोग यहाँ पर जो चूहा और मांगूस के अनलन सा, तो ये लोग वो डच के अंडा खाए लगल रहन सा। तो एक तो बोल चला कि डच डोडो के मुआ के खा लेलक, फिर अगर अंडा ये सब मांगूस और चूहा लोग खा लेलन सा। और फिर यहाँ पर वो लोग हरिंग भी अन ले रहन सा, और हरिंग तो यहाँ पर आज भी बा। और एबोनी के व्यापार डच के साथ साथ फ्रेंच भी करे लगल। तो ये रहल कहानी फोर्ट फ्रेडरिक हेंड्रिक और व्योगोंपो के, जहाँ पर डच लोग पहला हला उतरल रहलन सा। और आज भी ई इलाका डच लोग के पहला कदम पड़े खातिर जानल जाला। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर,
2: चलिए श्रोताओं, हमारी धरोहर कार्यक्रम के बाद आपके लिए एक भोजपुरी गीत कुछ ही घड़ी में 9 बजने वाले हैं, और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा की प्रस्तुति में। हमारी ओर आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन, मिलेंगे 10 बजे भक्ति धारा कार्यक्रम को लेकर हम उपस्थित होंगे।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: स्टूडियो की घड़ी हमें बता रही है इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। और अब लीजिए करुणा से समाचार सुनिए। नमस्कार करुणा।
2: नमस्कार अनुराधा, सभी को नमस्कार। दो अशांत रातों के बाद अब देश में शांति लौटती प्रतीत हो रही है। कल रात किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं है। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए टापू के कई क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने का अहम फैसला लिया है। ये कर्फ्यू अब शुक्रवार तक बढ़ा दिया गया। रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक जो कौचे में लेते और सैपिया में भी लागू होगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने माता पिता और बड़े बुजुर्गों से अपील की है कि वे ये सुनिश्चित करें कि नाबालिग लोग कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। अपराध किए जाने की स्थिति में नाबालिगों की कानूनी उम्र पर गौर करने का एक प्रस्ताव है। इस शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इसे पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने उन मॉरिशनों को धन्यवाद दिया जिन्होंने कर्फ्यू का पालन किया। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील करने वाले लोगों और विभिन्न इलाकों में पुलिस की सहायता करने वालों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और SMF अधिक सख्ती से कार्रवाई करेंगे, लेकिन हर परिस्थिति में विवेक और सूझबूझ के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए। तो आपको बताते चलिए कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। द्वीप के कई क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 93 लोगों की गिरफ्तारी की गई। सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली घटनाओं के पीछे दूर से काम करने वाली कुछ गुप्त ताकतों का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। और हिंसक घटनाओं में बड़ी संख्या में नाबालिगों की कथित संलिप्तता को देखते हुए सरकार चिल्ड्रंस एक्ट में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य

संख्या में नाबालिगों की कथित संलिप्तता को देखते हुए सरकार चिल्ड्रंस एक्ट में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य उसे उपलब्ध होगी। इसके लिए पहचान पत्र और अपने काम से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित न्यूनतम मात्रा संबंधी शर्तों का पालन करना होगा। इसके अलावा पुलिस की साइबर अपराध इकाई सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रख रही है। नफरत फैलाने वाले भाषणों या हिंसा के लिए उकसाने वाली पोस्ट प्रकाशित करने वालों के खिलाफ तत्काल जांच शुरू की जाएगी। आगजनी से लगभग 11,000 टन गन्ना नष्ट हुए हैं। चीनी उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। 15 अक्टूबर और शुक्रवार 16 अक्टूबर को सभी प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के साथ साथ तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों और उच्च शिक्षा संस्थान बंद रखा जाएगा। इसमें केवल एक अपवाद है, एससी और एचईसी की परीक्षाएं। कैम्ब्रिज की परीक्षाएं देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर सामान्य रूप से आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के संचालन और निगरानी के लिए जिन कर्मचारियों को काम पर लगाया गया है केवल उन्हीं को परीक्षा केंद्रों तक जाना चाहिए। अपनी किताबों के जरिए लोगों के जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए प्रेरित करने वाले मशहूर लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शिव खेरा इन दिनों मॉरिशस में हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। शिव खेरा इस शुक्रवार को एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे जिसमें मुश्किल हालात का सामना करने और अपनी क्षमताओं को पहचान कर आगे बढ़ने पर चर्चा की जाएगी। आयकर बल्कि करदाताओं यानी कि टैक्स पेयरों के लिए अंतिम डेडलाइन अब बेहद करीब आ गई है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अब केवल कुछ ही घंटे शेष हैं। एमओडी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि गुरुवार 15 अक्टूबर की आधी रात है। ऐसे में आज शाम अंतिम समय में रिटर्न दाखिल करने के लिए करदाताओं से तेज़ी दिखाने की मांग की जाती है। यदि किसी करदाता को सहायता की आवश्यकता हो तो एमओडी की हेल्पलाइन 2076000 पर संपर्क किया जा सकता है। शारदीय नवरात्र की पावन वेला जो है जारी है। आज पांचवें दिन को स्कंद माता की पूजा की जा रही है। स्कंद माता को प्रेम, ममता, करुणा और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विदेशी स्तर पर पश्चिम एशिया की सुलगती आग अब समंदर की गहराइयों तक पहुँच चुकी है। बताया जा रहा है कि होर्मुज में पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग मिसाइल हमलों में 2 बड़े जहाज समंदर में डूब गए हैं। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और वैश्विक व्यापार जगत में हड़कंप मच गया है। तो इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। नमस्कार।

0: आज की चर्चा।
1: आप सभी को नमस्कार। और आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। वैसे आज टेक्निक पर यूसुफ है और प्रोडक्शन सहायिका है उरुसा और हमारे प्रोड्यूसर है जिनेश। तो हम सब बिल्कुल तैयार हैं इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए। आजकल जैसे आप सब कोई जानते हैं, जब सभी लोग जानते हैं, आजकल हमारे देश मॉरिशस एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना कर रहा है। ऐसे समय में आम जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखना और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना बेहद बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम सोशल मीडिया, कर्फ्यू ऑर्डर और इसके दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा करेंगे। कर्फ्यू या किसी विशेष प्रतिबंध के दौरान प्रशासन के निर्देशों को समझना और उनका पालन करना हर नागरिक का जिम्मेदारी है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए, सही जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ पुलिस विभाग क्राइम प्रिवेंशन यूनिट से आए हुए सर्जेंट उगाटू उपस्थित हैं। नमस्कार। और आपका हमारे इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत हम करते हैं। सर्जेंट, जैसे कि हम सब कोई जाने लजा, हमने के देश अभी एगो तनाव भरल स्थिति में जियता। तो पुलिस विभाग के में कौन कौन कदम लेवल जात बा, और मतलब ई स्थिति को नॉर्मल आने के कौन कौन इस मतलब कौन कदम पुलिस देने से कौन कौन कदम होगा था?
2: जैसे बोला les 13 से कर्फ्यू ऑर्डर इशू हो गल बा, ला फोर्स पुलिसिया जैसे बोली लाजा फुली मोबिलाइज हो गल बा।
1: अच्छा।
2: जब बोले थे ला फोर्स पुलिसिया सब जन इनिटे बा, SMF, SSU, ADSU, CID, हमी के पुलिस रेगुलिये, सब जोन दे ड्यूटी जोन ऑफिस सब जोन काम करेला, सब कोई मोबिलाइज हो गल बा और सब कोई कॉन्सेंट्रे होता है। जमे है प्रॉब्लम हुआ जल्दी से जल्दी रिजोल्व हो जाए, बस

0: ऑर्डर के दौरान जनता लोग के कैसन परिस्थिति के झेले के पड़ेला?
1: देख जुन लॉन्डवाते हो लोग के स्वावी नहीं बा और जुन लॉन्डवा में नहीं सीते हो बा हाउ नहीं भेजिया को मजिया तुम्हारा द्वा निकले के पस की जब एगो कर्फ्यू ऑर्डर बा मोरिस में भेजिया रिस्क बा जे लिखल बा रिस्क रही तुहरा चहला तुहर रिस्पॉन्सिबिलिटे लेके हमने ला पुलिस बोला था जा एविते करे के हाई सब ले पोकवा लिखले के पास की प्रॉब्लम वा नहीं सक बा जाने कहाँ पर बा आप जब हाई सब कर्फ्यू ऑर्डर ऑनलीवे हो जाए तब सब चीज नॉर्मल रही बहुत इंफॉर्मेशन मिली तब तब सब कोई नॉर्मल सकी सुय के लिए हुई हाई कर्फ्यू ऑर्डर जैसे कहते हुआ फिर से बोला था सकीला और एक्सटेंड हुई चाहेला कम्युनिके आतान करी
0: परिस्थिति पर निर्भर होला तो ये सब तोड़ फोड़ जुन होता जुन होल यकीनन ये एगो क्राइम है ऑफेंस है तो सर्जन हमने के सब बतावे कि कितना प्रकार के ऑफेंस बाद
1: है मैं ढेर प्रकार के ऑफेंस बा प्रेमियर ऑफेंस जो नावेला जे तुहर घर से निकल ला तो हाउ हा ब्रीच ऑफ कर्फ्यू ऑर्डर को मजिया हई कर्फ्यू ऑर्डर के रिस्पेक्ट ही नहीं कर ला हई बोल दे दिए ओकर फाइन कितना बा और जो ऑफेंस बोले के आगे हम बोलब प्रेमियर जुए प्रेमियर दिन जब कर्फ्यू ऑर्डर रहल 93 पर्सन आरेते हो रहल Hey, 93 personnes ont beaucoup différentes offenses que l'Irlande.
0: Quelles sont les
1: offenses? Première, c'est le breach of curfew order. Or, et deuxième, offense, c'est le taking part in riot. Qu'est-ce que c'est? Problème, c'est un groupe, mais problème, c'est une manifestation, c'est une violence, tout le monde participe à Ottawa. C'est le langage créole, mais c'est le langage. Aguaba, tout le monde a l'essence de la toile, enflammé à Ottawa. Taking part in riot, damaging property. Hey, bahut grave ba. Kewal government property nahi. Private property. Obstructing public road. Janela khay dugoza fewa kitna diga kar li ba. Hau metro ek semen se nahi roule ota. Hey, indirectement sab ko ipe impacte ota. Hey, l'époque l'examen mein paral special organisation kare ke ministre transport ke kaise hami ke laika jaye. L'examen composé kare. Parce que metro facile rahal. हाउ मैं को मजे लेता हूँ सकबग अने 30 मिनट में हम डेस्टिनेशन में चल जाब जब हाउ पैरालिजी हो गए तब पर दूसर डिप्लोमेट करे कि जब हाई जो मैनिफेस्टेंट बा जो मालफेटर बा वो लोग सेंसेशन में इमोशन में हाई सब डिसऑर्डर करते हैं वंजा मिसल में हाई सब उफ और जो ऑफेंस बा पोसेशन ऑफ एक्सप्लोजिव कुछ बा जब वीडियो देखा देख बा तो हाउ जैसे बोलिया सा कॉकटेल मोलोटोव हाँ को मजे वो लोग फैब्रिक करते वन जा लिसेंस माजूत लेके बूटे में डाल के हाँ में आग डालते वन जा स्टेशन में आग डाल बा व्हीकल जलावते वन जा आसुन आग काल कान में आग डाल रहल पियाज वुल सुपर मार्शल डिफेंस करते वन जा है सब जो ऑफेंस तुहरा बोलत है बहुत खराब बा जैसे उसका क्रिमिनल ऑफेंसेस अरेस्टेबल हाई जून 93
0: अरेस्टेबल तो गिरफ्तार कर ले बा इतना 93 में तिरान दी 93 तो इमें कैसन कैसन लोग बाती
1: हाई में तोरा बुलब तो शुके हुई बतूरा हाई 93 वा में मेजोरिटी से यंग एडल्ट विजिया 25-30 इयर्स के जवान होवन जा और सब जो जस्ती शोकों बहाई में 15 मिनट या बाहर मिके लाई का लोग
0: जब बोलते हैं मिनट माने कि वो लोग 18 के नीचे
1: 18 बहुत बड़ा 14 15 के लाई का है ब्रायुत में है मैनिफेस्टेशन में पार्टिसिपेट हो जाओ हो तो वन जा है बहुत ग्राव बा है एक बहुत क्वेश्चन सब को एक चाहिए ला पूछे करेगी कहे हम इके लाई का लोग है चिप दे illégal action mais participer quand même il y a problème moi quand en bas
0: d'ailleurs et qu'est-ce déclencher tout il se met sur quand c'est open holba
1: digbata beaucoup miné par bolaba miné par batiapsa janila how miné wa शुरू कर बैठा

0: alungan kari ke igu swane hala lwa
1: ita lai kalo kati ta parent lo ke ke cha hela beto
0: ta haye bolata i hamik la police ke wala police nei ministère sub jun organisation ONG sub ke la me de wata hamik ke jeune ke aide kari ke parce ki o logo hamik ke future hana jaise bolasa hamik ke jeune age o logo pe wa contrôler kari ke ta hamik l'autorité ministère sub ke hamik ke zefo karata isa Jai la sa expliquer beaucoup de détails c'est expliquer là ça. J'ai
1: essayé de la miner mais quand j'ai quand au miner
0: tout le 15
1: de au log que bhavishy au par future que mais
0: au log jane la hai
1: ko la police case mila la bhi jaise
0: au log jane la habi jeune hawan sa au log conséquences wa nay sochat wan sa kaise au log par impacté ho négativement jane la jaise igo case ko maje tohar mai go case ho gal लाकू पर जाए के को दाने हो गई ल हाउ तुहर दुशे में जैसे बुला सा लैंग्वेज क्रियोल तुहर मोरालिटी में चल जाए ना और मोरिस में तो हवे को मजे सबसे बड़ा सर्टिफिका है सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर जैब काम खोजे सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर वायाजे कर ब वीजा मोरालिटी जैब पीएमई के एप्लीकेशन कर रही मोरालिटी तो हई को मजे हमी के जेनेस में हई सब छोटा छोटा एरिया नहीं है बोला था हमी के मासूमियत से
1: मासूमियत से ले
0: मासूमियत में जो सब एरिया कर लिया हाउ बहुत इम्पैक्ट करी उन लोग के फ्यूचर में खाई जाए लासा एक्सप्लिके करी लासा जाने लो बहुत लेटा बहुत प्रिपरेशन लेके हम खाई का मुआ करी लाजा प्रेजेंटेशन करी लाजा पावर पॉइंट सब जो फोटो जो प्रॉब्लम ला बतलाई लाजा जमे को मजे लाइक वा जानी खाई सब को मजे प्रॉब्लम है खाई में नहीं चाहिला ढूके के और काल हमी के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एगो मिसास पासे करलक हबी जैसे लालवा बा एगो लड़का के कुमाजे फुदे कातूज आ मोंते रही तब सकब पुरस्वीव करी तो हबी जैसे सिचुएशन वहाँ होल देखली जा बहुत मिने इम्प्लिके बा तो गवर्नमेंट सोचता है लालवा जोन चिल्ड्रन एक्ट है
1: हाउ
0: अमांडे करी हाउ लालवा लाज कातूज आ वा के उसकी बेसे हो जाए 12 ans खई चला थोड़ा आतान करे के जब एप्लीमेंटे हुई तो अनाउंसे हुई और एक उसाफे बोलती हमी के जन के देख बहु वीडियो जन लोग मास्के होता मास्क कागुले होता जैसे बोली कॉकटेल मोलोटोफ ते एगो पेरेंट एगो फैमिली जब देखा था घर में ओकर लड़का हई सब चीजवन मैनिपुलेट करता तो चाहे लगे कि शोपोसे करे कि ना है एगो खेल नहीं है लेसेंस से एगो लड़का खेलता बूटे में डालता एगो बाजीनाज नहीं है हवे शुरू से बोला था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने ला लेकोल उकर पर ट्रावाई करता ला पुलिस उकर पर ट्रावाई करता
1: अब सके ना जैसे पेरेंट अभिभावक वो लोग नहीं देखा था वंश की कुंजी होता सिर्फ जैसे आप बोला था चाहे जाने की तो लड़का कहाँ कौन ची करता है बखतवा कहाँ आकर करने ही बा
0: जैसे एजुकेशन कमांस आ मिज़ों ना लेकुल में एकेडमिक मिली ला फोर्स पुलिसिया तो हरा गिदे करी लोटोरिटी तो हरा गिदे करी जे पेरेंट तू तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिबा दब बहुत प्रॉब्लम होला हाउ लाइक वा जन थोड़ा कुमाजिया डिलेंकां हो गलबा लोग की ड्रेस कर हाउ इसे हम निवेदन करते हैं पेरेंट लोग संगे तो हर लड़का लोग के चाहिला बतियाई के एक्सप्लेन करे कि हाई सब प्रॉब्लम में नहीं ढूँके
1: के तो जब बोला मिनिया लोग के गिरफ्तार कर ले बात उन लोग के कैसे आप लोग उन लोग से चाहे बतियाई के उन लोग से जब पकड़ ले ले बा
0: हाँ जब एगो मिनिया हुआ जाने ला एगो मिनिया जैसे लड़का बोली ला जा नहीं सकब सा पारे लालवाई से बोली ला पारे एगो अजुल मतीन एक्शन ले एक्शन टेकन वा डिफरेंट हो जैसे बोला चाहे ला प्रेजेंस पेरेंट एगो एडल्ट बा एगो ऑफेंस करला तुहरा लेके जब से स्टेशन क्वेश्चने करब से जब एगो लड़का रहेला चाहे ला एगो पेरेंट एगो फैमिली एगो गार्डियन एगो रेस्पॉन्सिबल पार्टी अब एगो मिनिए के हबी जैसे लालवा बा नहीं सकेला से डिटेन करे डिटेन को मजे ओके बंद करे मिसलमा ओके आप से क्वेश्चने करब से उस स्टेटमेंट दे प्रेजेंस ओकर पेरेंट तब से मो प्रोसीजर वा पारे है लड़का के चाहे ला पेरेंट लोग के जाने के लड़का के गो लाकू से पारे है चिल्ड्रन कोर्ट जे ऐसा लाकू बा वे जे ऑफेंस हो बा लड़का लोग के खाली प्रोसीजर वा डिफरेंट है नहीं चाहिए सोचे कि आकोश हमी मीनियर है लड़का है त हमी के लालवा नहीं बा।

0: Jadi bila sal tu tepe yang minai, laika hawa minai hawa silma la loi ba. Silma parent ke cahela isko jadi bila sal akompanye kerja ke hawa laikuan ke, mi silma la loi ba hia memegu minai hawa.
1: तो आज की चर्चा इस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस थोड़ी देर में हम इसको जारी रखेंगे और सोशल मीडिया पर बात करेंगे. फिलहाल यूसुफ आपके लिए गीत चला रहे हैं.

0: आज की चर्चा।
1: इस प्रोग्राम को हम जारी रख रहे हैं और आपके पास कोई सवाल हो 402-808-5 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और आज इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में, इस महत्वपूर्ण चर्चे पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कर्फ्यू के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, अब थोड़ा घड़ी में सोशल मीडिया पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ हैं क्राइम प्रिवेंशन यूनिट से आए हुए शेजान उगाटू हमारे साथ हैं। तो इन जैसे अभी हमने कर्फ्यू पर बताई दी जा, अब तनी हमने सोशल मीडिया पर बताया कि तनी हमने के श्रोता जितना कोई हमने के संगे भा भी इस समय, तो उन लोग के तनी बताओ कबो कबो सोशल मीडिया पर गलत गलत खबर छाप दे रहा था, ई में कानून कौन ची बोला?
2: जब बोलिया जा सोशल मीडिया चाहिए जाने के सोशल मीडिया सब जिन प्लेटफॉर्म ऑनली जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप बहुत बा है, सब कौन से है होला। और सोशल मीडिया बहुत मोरिशें पॉपुलेशन नहीं जाने लंजा कि लालवा बा, बहुत जना सोचेला कि सोशल मीडिया में सब बस कुछ पोस्टे करे किनों के जहाँ जब फोटो करे, वीडियो करे, पोस्टे नहीं जाफे दे बास बोला मैं। एक आदमी के द्वारा नहीं है उकर कंसेंट, बिना कंसेंट के बिना उकर फोटो लेके उकर वीडियो करके हम अपलोड कर दे पा और हाउ में पब्लिक कमेंट करता, शेयर करता, हाउ कमेंट वा निगेटिव बा। तो हई चाहला पब्लिक के जाने के लालवा साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी बा मोरिस में, लालवा आईसीटी बा मोरिस में।
1: अच्छा।
2: और लालवा वा जब बोलत है हाउ क्राइम है, जब क्राइम से बहुत ग्राव है
1: लालवा वा इहु में फाइन है।
2: हाँ, हई के फाइन बहुत ज्यादा बा, जब ब्रीच ऑफ आईसीटी करला साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, उकर फाइन मैक्सिमम 1 मिलियन रुपी जाला, बहुत है, और 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम। हम निवेदन करब पब्लिक से, टू ले तो बोलीला सोशल मीडिया हाँ एगो फासों दे कम्युनिके
1: करके, एआई का जमाना,
2: हाँ एआई का जमाना बा, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, तो चाहिला पैरामीटर में रह के, हाँ चाहिला कम्युनिके करके, चाहिला शेयर करके मैसेज में, चाहिला जाने के जिन चीज हम शेयर करत है जेन्युइन बा, ऑथेंटिक है। अभी देखा कर्फ्यू बा, अभी है ढेर वीडियो शेयर के लिए होता, बहुत बहुत वीडियो, और हमू बहुत देखा है सोशल मीडिया में, हम जो ऑब्जर्व कर ले है हाउ में बहुत वीडियो फेक है, कुछ ही फेक, कुछ कुछ ही बोलत है फेक पर,
1: कैसे कैसे
2: कैसे फेक है। हम देख ली एगो वीडियो हाउ मोरिसवे नहीं है, हाउ जो आग बतावत है वंजा, हाउ ऐसी दवा एगो वीडियो इंटरनेशनल लेके हिया मोरिस के कुमजे पासे कर रहा था, हम के पब्लिक वो लोग खोजिला सेंसेशन करेंगे, सेंसेशन मोरिशें जाने ला मोरिशें एगो सोसाइटी है ऐसा है, जब हम के कुमजे सोशल मीडिया मिलल हम सब नहीं है एगो बोन पोर्सेंटाज ओ लोग निमन से सेवी करता, एगो ची पोर्सेंटाज बा ओ लोग सेंसेशन खुशी रही लंजा, जा एगो प्रॉब्लम हुआ था हाउ सोशल मीडिया वा सकबे हाउ प्रॉब्लम वा के रेजूट करे बे, हियाँ ले कॉन्ट्रेयर हो जाता, हाउ सोशल मीडिया वा से हाउ प्रॉब्लम वा के अग्रावी करते ही जा। अब जेकबत जैसे बोलना ए आई, ए आई उठा ऐसन जैसे बोला था एडिटिंग ऐसे सांझे करेला दिख बत
1: सच्चा
2: सच्चा पारे देवेला बेहाय सब सिचुएशन के उलोक के दिवार है।
1: तो ला पुलिस देने से इस सब जोन जोन फेक न्यूज़ होला कैसे कैसे आप लोग मजा जैसे जाने ला जाके ये फेक है,
2: जाने ला पुलिस में एगो यूनिट है साइबर क्राइम यूनिट, उलोक प्रोफेशनल हवन सा, जब टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया है उन लोग के काम है। हबी स्पेसिफिकमा एगो अफेयर जो बोला था उसका नाम है ई पैट्रोल, साइबर पैट्रोल, कुछ ही है ई पैट्रोल, साइबर पैट्रोल है जो सब जो वीडियो जो कॉन्सर्न बा हबी है कर्फ्यू से बहुत वीडियो से अकेले होता, हाउ साइबर क्राइम यूनिट सब वीडियो दिखाता, दिखाता उसका जेन्युइननेस, इसकी जेन्युइन है नहीं जेन्युइन है, अब हाउ वीडियो में टुकुमजिया पॉपुलेशन के प्रोवोके करता हुआ जैसे

0: Il a ça, l'haine raciale qui, comment dire, augmente que l'Ottawa. How fake news provoque l'Ottawa. The how la police hésite n'aïhouta, tu auras arrêté Kari. Or, n'aï soutien qui est fake account, carbata la police n'aï. Ou le professionnel Hawanja, tu auras que après l'enquête, hoy, technologie n'a facile ha mauvais cam karike, ou t'n'aï facile ha apradi loke pakreke. हम एगो निवेदन करत है पॉपुलेशन लोग से चाहिए अटेंशन करके हाईली पोकवा जाना कौन वीडियो फुल शेयर करत हुआ कौन कमेंट करत हुआ हम बोलब सोशल मीडिया वा के शेयर भी कर पॉपुलेशन के एडे कर लोटोरिटी के एडे कर
1: तो ऐसे कबो मिलल कोनो एगो ऐसन इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया देने से ला पुलिस के मिलल ऐसन तब वो अपन काम कर लेबा
0: तो हां जोन जोन वीडियो public jeun share karata howe edikari la enquête karike identifier karike ke manifestation me ba ke rosbida karata ke ak dalata bahut jana sensation karike video wa dalata indirectement how la police ke edikarata aur hum ego request karti public se je tu har lagi aisan video ba sensation ne kara la police ke video wa da हमी खाई वीडियो सीधा ला पुलिस के बिदा कर ला पुलिस के बिदा कर बते है हमी के एडी करी हाउ मालफेटिया लो के आरेते
1: समाज के
0: सोसाइटी के प्रोटेजे करे के हाउ सेंसेशन वा जानेला हाउ मैं बहुत देगा होला जैसे बोली ला जाए तो चाहिला अटेंशन करे के और फेक न्यूज वा बहुत डेंजरस है हबी जब से हाई कर्फ्यू ऑर्डर ले थे से हाउ क्वालिटी फेक न्यूज बा हमी के सोशल मीडिया में प्रोवोकेशन जिन का इते होता और हम एगो
1: तबे के सैंक्शन ले
0: सैंक्शन हां जे जे हाउ सब फेक न्यूज कर ले हवंजा तो उता अरेस्टेशन हुई हाउ फेक न्यूज नहीं सक बक मजा मिराए के पीछे से लुका के हाउ सब मिसाज बिदा करे के जैसे बोली प्रोफेशनल लोग काम करता साइबर क्राइम यूनिट में हाउ तो जाने ला टेक्नोलॉजी जितना अवांसे है तोरा पकड़े वो कोई फासिल हो जाला है बहुत फासिल हो जाला अटेंशन चाहिए ला करे के पब्लिक के और
1: सावधान
0: सावधान चला रहे के और एन जनरल पब्लिक के चाहिए ला जाने के जब है केवल अभी नहीं कौन से है नेपोट कब एगो प्रॉब्लम बा एगो ऑफेंस होता पेई में एन टांक एन सिटोयन रिस्पोंसिबल तो हर डिवोर है हाउ सिटोयन के एडे करे के नहीं की एगो एक्सीडेंट होल बा हबी लामोड हो गल बा हमी के पेई में मोरिस में जैसे वो एक्सीडेंट होए पब्लिक वन नहीं आई एडी करे ब्लेसी वाके कुछ करे लंजा उकर पोता ब्लिकाली
1: फोटो
0: नहीं तो वीडियो लाइव करते वंजा सेंसेशन बोलियन सा ला पुलिस ता आदे होता आई के लैम्बुलेंस ता आदे होता आई के ते चाहिए ला जाने के तो एगो रिस्पॉन्सिबिलिटी बा तू एगो सिटोयन हवा और चाहिए ला पब्लिक के जाने के ego mon public jeune problème difficulté même ba toi hawa tu aura possibilité ba OK aider kare ke je tu aider nahi kar la sakab ja tu aura poursuivre kare failing to assist a person in danger criminal code me ba non assistance aux personnes en danger jeune place aider kare ke tu kochi kare thawa potable ke sensation kare thawa aur chahila jane ke तुहर लावी ऑन डांजे नहीं डाला सब एडे करी ता एडे करिया मिसलमान सेंसेशन नहीं कर पोताब नहीं लेके वीडियो कर फेक न्यूज सेंसेशन है बहुत डांजरी है और फिर से बोला था
1: फाइनल काम अपन नागरिक
0: सिटुएशन रिस्पॉन्सिबल है हमें के जैसे बोला एगो नागरिक एगो जाने ला मोरिस सब कोई बोला पे पाराजी चाहिए प्रूव करे के खाली नहीं पापिये में चाहिए ला पब्लिसिटी करे के पाराजी हाँ पाराजी है सर सिर्फ हमें के एक्शन से चाहिए ला बताए कि सच्चे के पाराजी है सर एगो प्रॉब्लम बा हमें एन टांक एन सिटोयन रिस्पॉन्सिबल हमें लोटोरिटी के
1: तो लोग के कोनो हॉटलाइन है होला रहेला के कौन चीज
0: ला पुलिस के हॉटलाइन बोलत है जैसे बोली ला पुलिस के जैसे इन्फॉर्मेशन रूम के लिमोरो है 468-0034 और 468-0035 है ला पुलिस इन्फॉर्मेशन के लिमोरो है और एगो लिमोरो हॉटलाइन बा 140

0: 48 N
1: 148.
0: कोनो भी इंफॉर्मेशन N 48 चाहिए पब्लिक के जाने के हो फ्री ऑफ चार्ज है और तुहरा एगो इंफॉर्मेशन बा दे के और तुहरा एनोनिमस को मजे तू नहीं नहीं चाहते हो तुहरा नाम जिविल गे होई सगबस सब गुप्त रखे सगबस 148 में टेलीफोन करे ला पुलिस के इंफॉर्मेशन दे के हुआ तेल प्रॉब्लम होता तो एक्शन लेके और सगबा एनोनिमस रहे हम एक निवेदन कर दे जा कोनो प्रॉब्लम हो तो हर कार्चे में सिक्योरिटी पर ला पुलिस के इंफॉर्मे कर
1: और जैसे फोर्स भी यही एक मजे सब को इकट्ठा हो के तब अपन ला पुलिस लोग के सगबा बतावे कौन ची कहाँ कहाँ कौन स्थिति ऐसे होता
0: अभी ऑब्जर्व कर दे जा फोर्स भी बहुत लामे देवता la la l'autorité qui la police qui hamik remercie la police remercie karata sab fausse vive que jeune hamik aide karata manja mais seulement fausse vive que chela jane que aide kara mais seulement tout la loi hat menail je comme je ego manifestant qui arrêté kar la ok la police qui hanova kara tout nai ja ok mare tout comme je la loi karata wa
1: hat menai chela
0: liki janila hau l'émotion d'une hau panique rahela colère mais dehors hala ho jala blessé kar di bata wanja amike public ke tahau bahut grave ba jahan par tu ego témoin ba jahan lame de ke tab accusé ho jaiba plito ego problème ho ta
1: sab pare ne na c'est pas que nous gesticuler
0: ta hawe se bolina amike l'émotion tu la contrôler kare ke janela hau pression mais nahi chala comme dire l'émotion qui hamike overpower kare ki nahi ta jaise boli habi témoin la témoin se accusé ho gaila la police ke chala okar kaam kare de ki seulement fir se bolte hum remerci kare thai public ke force vive ke bahut madad milata aur bola ego chiz ha jo naam hai neighborhood watch surveillance voisinage hayo hamike ego ko duty ha ko chi ha ka che mein l'endroit mein jaise mon seulement boli la ja हुआ पर एगो नेटवर्क सेट कर ले वाला पुलिस हाउ ने बाउडवाच पुलिस ला जा तो हाउ एगो व्हाट्सएप ग्रुप है जैसे को मजे एगो काचे में रहेला सब वाजे लोग के कामरात के जाने ला कोनो प्रॉब्लम होता तो ओ लोग
1: व्हाट्सएप दिने कर देते
0: व्हाट्सएप वा निमन से सेवी करत वन जा हाउ व्हाट्सएप ग्रुप में कोनो प्रॉब्लम होता कोनो कोनो व्हीकल लूज से किले होता तो हाउ में बिदा कर दिवलन सा तब पब्लिक हाउ ला पुलिस के बिदा करेला तब एक्शन ले ला जा हम पॉपुलेशन से एनकरेज करब है जोन बोला था नेबरहुड वॉच कम्युनिटी पुलिसिंग सब गवर्नमेंट प्लान में बा पुलिस स्ट्रेटेजिक प्लान में बा हम एनकरेज करब तो लोग के चाहिला है सब तो लोग के काचे में इम्प्लीमेंट करे के जानेला है स्टैटिस्टिक बतलेले बा जहाँ जहाँ पर नेबरहुड वॉच बा वहाँ पर क्रिमिनालिटी बेसे होल बा 100% टर्मिने नहीं होल बा सिर्फ बहुत बेसे होल बा क्राइम प्रिवेंशन यूनिट हम ही काम हुआ हम की को ड्यूटी है हम लिमो क्राइम प्रिवेंशन यूनिट देवत है 454-0766 जे कोई के लौकता उकर कौचे में वो लोग इंटरेसे होता नेबरहुड वॉच करे के कमिटी पुलिसिंग करे के हम ही के टेलीफोने कर हम ही आप से एस्टैब्लिश
1: 454-0766
0: टेलीफोने कर हम एक आप से हाउ एस्टैब्लिश कर अब से ला पुलिस आदसू सी आई डी सब कोई आप से एक्सप्लिके कर अब से पब्लिक के बदला आप से कैसे है चलेला कौन एक्शन चला ले के और है बहुत बहुत हम एक सोसाइटी के ईदी करता लाभदायक है
1: तो जैसे आज कि इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए सर्जन ओगादू जो क्राइम प्रिवेंशन यूनिट से आए हुए बहुत कुछ जानकारी बहुत जानकारी दी तो अंत में जैसे अभी देख लीजा कल देख सकब जब बोले कि तनी हमने के देश खतरे से बाहर तो नहीं बोला लेकिन तनी सुन
0: काल में होल
1: बा तो इमें सकेला आप लोगों के काम हो या फिर सब सितवाएँ जो जितना हमने के सिटीजन होता वो लोग अपन हाँ तो बताओ सर तो एक दो शब्द अंत में
0: हम जैसे बोली रही शुरू में फिर से बोला ला पुलिस ओपेरे होता हाउ स्ट्रैटेजी जीरो टॉलरेंस हम एक नहीं टॉलरे कर अब सा जे कोई ला लॉ के उल्लंघन नहीं करता हम बोला पब्लिक से है कर्फ्यू आ कर्फ्यू दवा के रिस्पेक्ट करे के जे रिस्पेक्ट कर बस सब चीज़ नॉर्मल हो जाए तो है

0: कर्फ्यू हो जाए, ऑनलीवे हो जाए, सब चीज़ नॉर्मल हो जाए। और हमी हम बोलब चैला जाने के मोरिस के रेपिटेशन ऑन जो में बना खई सब वीडियो वन इंटरनेशनल प्रेस में देजा पासे होता चैला पब्लिक के
1: कैसे जो आपके अनुभव से देख लो कई पहला हला ऐसा नहीं कोई स्थिति
0: जिक बत है हबी कर्फ्यू ओडर बना जैसे कोविड रहल ते
1: उते अलग रहल अलग रहल कर्फ्यू वा रहल अलग
0: अलग रहल मिसिल मा टुजू हाउ रिस्ट्रिक्शन वा रहल मा खै थोड़ा डिफरेंट बा हम एक नए खुशी है ऐसा है फिर से आई मोरिस में निवेदन करत है ला लॉ के रिस्पेक्ट कर ला पुलिस के एडी कर बस की है सब कोई पे इम्पैक्ट होता और जैसे बोली रही नई शैला के बुलाए कि हबी लिपो के एग्जाम में है जा हमी के लड़का एस सी एच एस सी देजा लोग पर स्ट्रेस बा एगो एडिशनल स्ट्रेस हो गल बा तो हम निवेदन करत है सब कोई के चेहरा लापे और लामुनी में रह के लुटोरिते के डिफिसिल नहीं है खाली लालवा के रिस्पेक्ट कर तो हम एक सब कोई लापे पर
1: तो हम यही आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम से जितना कोई हम लोगों का साथ दिया वो लोग सब तब इस प्रोग्राम से लाभ उठाया होगा। वैसे जैसे हम बोल दी सोशल मीडिया कर्फ्यू के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और जनता की जिम्मेदारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी सर्जन ओगादून को धन्यवाद देते हैं। और इस कठिन परिस्थिति में हमें याद रखना चाहिए कि सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आइए हम सब मिलकर मॉरिशस में शांति, एकता और सुरक्षा बनाए रखने में अपना योगदान दें। तो इसी बात पर हम आप लोग से आज्ञा चाहेंगे। वैसे इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में यूसुफ, उरुसा, जिनेश, नर्वता खेदना और निष्ठा का साथ रहा, सबको ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। एक और मुलाकात तक हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।

0: स्टूडियो में करुणा जी, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को नमस्कार। दो शांत रातों के बाद अब देश में शांति लौटती प्रतीत हो रही है। कल रात किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं है। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए टापू के कई क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने का अहम फैसला लिया। प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि ये कर्फ्यू अब शुक्रवार तक बढ़ा दिया गया है। रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक जो काउची मिलिथिया और सैपिया पर भी लागू होगा। सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली इन घटनाओं के पीछे कुछ गुप्त ताकतों का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। घटनाओं के सिलसिले में 93 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। मंत्रिमंडल के खास बैठक के बाद कल सरकार ने अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और भी सख्त करने का निर्णय लिया। हिंसक घटनाओं में बड़ी संख्या में नाबालिगों की कथित संलिप्तता को देखते हुए सरकार चिल्ड्रंस एक्ट में संशोधन करने पर विचार कर रही है। उद्देश्य उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करना है, जिस उम्र से नाबालिगों को हिरासत में रखा जा सके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत आधी रात से गालन के हिसाब से ईंधन खरीदने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अब ये सुविधा केवल पेशेवर लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इसके लिए उन्हें पहचान पत्र और अपने काम से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित मात्रा संबंधी शर्तों का पालन करना होगा। पुलिस की साइबर अपराध इकाई सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रख रही है। नफरत फैलाने वाले भाषणों या हिंसा के लिए उकसाने वाली पोस्ट प्रकाशित करने वालों के खिलाफ तत्काल जांच शुरू की जाएगी। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो देश के सभी सरकारी और निजी विद्यालय आज और कल बंद रहेंगे। ये निर्णय प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू हैं। इस बीच एससी और एचएससी की परीक्षाएं निर्धारित अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जा रही हैं। शारदीय नवरात्र की पावन वेला जारी है। आज 5वें दिन को स्कंद माता की पूजा की जा रही है। स्कंद माता को प्रेम, ममता और करुणा का प्रतीक माना जाता है। उल्लेखनीय है कि देश के मंदिरों में शाम के समय पूजा की जा रही है, जो कि रात 8 बजे तक चलेंगी। विदेश में पश्चिम एशिया की सुलगती आग अब समंदर की गहराइयों तक पहुंच चुकी। बताया जा रहा है कि होमूज में पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग मिसाइल हमलों में 2 बड़े जहाज समंदर में डूब गए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। माघजानी रोजबेल में 42 साल के 42-year-old श्री महेश योगेश कुन्नी जो जेगो से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी माँ के मकान माघजानी रोजबेल से उठाकर दाह संस्कार के लिए माघजानी की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। सोल्फेगिनो नंबर 4 वाकवा में 81 साल की 81-year-old श्रीमती बिंदुमती जगेसर पैदाइशी नाम सिपर सार जो मीला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे अविनाश जगेसर के मकान सोल्फेगिनो नंबर 4 वाकवा से उठाकर दाह संस्कार के लिए फिनिक्स की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। कैस्ट्रेल रोड कॉम्बेटो ब्रिटानिया में 75 साल की 75-year-old श्रीमती तारामती बजन पैदाइश नारायण जो प्रेमिला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे के पति जगदीश बजन के मकान कैस्ट्रेल रोड कॉम्बेटो ब्रिटानिया से उठाकर दाह संस्कार के लिए तायाक की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।

तो चलिए श्रोताओ, 10:06 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं भक्ति धारा कार्यक्रम। समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। तो चलिए, इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं श्रोताओ। कार्यक्रम के अंतर्गत चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में। गुरुवार का दिन है आज, भक्तिमय वातावरण है चारों तरफ, हम माँ की जय जयकार कर रहे हैं। नवरात्रि का जो है हम बहुत ही धूमधाम के साथ हम मना रहे हैं। तो चलिए श्रोताओ, कार्यक्रम की शुरुआत जो है भक्ति भाव के साथ हम करेंगे। सबसे पहले हम प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को हम याद करेंगे इस कार्यक्रम में।

तो चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा इस कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। और गुरुवार का दिन जो है, हम आज का दिन जो है, भगवान विष्णु जी को पूछते हैं। विष्णु जी जो है पालनहार है, सब की पालन जो है वो करते हैं। तो आज का दिन जो है बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ उनको हम याद करते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम में एक बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान जो है हम आपके लाए हैं, चालीसा। और आपको पता है मंत्रों में कितनी शक्ति होती है, और विष्णु चालीसा का पाठ करने से मन में अपार शांति की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपके लिए विष्णु चालीसा इस कार्यक्रम में।

चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं और आपको पता है कि जब हम इन दिनों जो है बहुत ही श्रद्धा पूर्वक हम नवरात्रि पर्व जो है मना रहे हैं और 9 दिनों तक हम माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान करते हैं और माँ दुर्गा के 9 रूपों के अलग अलग महत्व होते हैं और हर एक रूप से हम बहुत कुछ सीखते हैं, उनके पहनावे से, उनके चढ़ावे से, उनके जहाँ अस्त्र शस्त्र के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं, संदेश पाते हैं और हमें जितनी भी सीख मिल रही है हमें अपने जीवन में भी उतारनी होती है। तो आइए कार्यक्रम को जारी रखते हुए चंद भक्ति गीत माँ दुर्गा पर आधारित।

तो चलिए श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में 10:30 बज रहे हैं और हम एक विशेष कार्यक्रम नवरात्रि के संदर्भ में हम चला रहे हैं समय। और अभी जो है आप ये चंद भक्ति गीत जो है इस कार्यक्रम को जारी रखने वाले हैं। तो चलिए आज जो है हम पांचवा दिन जो है हम मना रहे हैं और आज का दिन जो है हम माँ स्कंद माता को पूजते हैं। जी हाँ, माँ दुर्गा के एक स्वरूप है, वो है माँ स्कंद माता। वैसे कार्तिकेय को जो है हम स्कंद करते हैं, स्कंद की माता। गोद में स्कंद जी है, चार हाथ हैं और क्या देती है वो माँ हमें, संतान, सुख और ज्ञान जो है प्राप्त हम करते हैं। और आज का दिन जो है हम भोग के रूप में केले चढ़ाते हैं। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, आपके चन्न प्यारे प्यारे भक्तिगान जो है हम चला रहे हैं माँ दुर्गा पर आधारित।

चलिए श्रोताओं, चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में हम चला रहे हैं और कार्यक्रम भक्ति धारा को जारी रखेंगे दिन के 11 बजे तक। जैसे कि आज का दिन जो है बहुत ही शुभ दिन है, माँ का जो स्वरूप है वो है स्कंद माता, और स्कंद माता का सबसे बड़ा संदेश है माँ की ममता सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे वो अपने बेटे स्कंद यानी कि कार्तिकेय की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है, वैसे ही वे अपने भक्तों की भी माँ की तरह रक्षा करती है। और आपको पता है जो है भोग के रूप में आज जो है हम केला चढ़ाते हैं, क्यों? केले का भोग लगाने से सेहत अच्छी रहती है और बुद्धि तेज होती है। और आज का दिन जो है हम पीला गेंदा जो है या फिर गुलाब जो है हम चढ़ाते हैं, साथ में मिठाई के रूप में पीली मिठाई या खीर भी हम चढ़ा सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को जारी रखेंगे।

चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं कि जब फूल भोग शरीर से पूजा है पर मंत्र आत्मा से पूजा है, फूल मुरझा जाता है, भोग खत्म हो जाता है पर मंत्र की शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। लगातार एक ही शब्द बार बार बोलने से आपका ध्यान एक जगह लगता है, सांस धीमी होती है और जितने भी तनाव है वो सब कम हो जाती है। बिना मंत्र के पूजा आधी मानी जाती है श्रोताओं। मंत्र से देवी जल्दी प्रसन्न होती है और मान्यता है कि मंत्र के चारों तरफ एक अदृश्य घेरा बना जाता है जिससे बुरी नज़र डर नहीं आती। और मंत्र की ध्वनि जो है वे दिमाग के जितने भी नकारात्मक विचार है वो बंद हो जाते हैं। और बहुत ऐसे सरल मंत्र है माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, और सबसे जो प्रचलित मंत्र है वो है ओम दुम दुर्गाय नमः। तो मंत्रों का जाप आप जरूर कीजिए इन 9 दिनों में।

तो चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम का समापन जो है हम कर रहे हैं और कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के बाद उर्दू कार्यक्रम सायदा के साथ। तो चलिए सुबह सवेरे 6 बजे से समय तक आप लोगों का साटा, बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं वापस कल भक्ति धारा कार्यक्रम को लेकर, हम उपस्थित होंगे। आप सभी को हम कहेंगे शुभ

0: मिलते हैं करुणा जी से, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को नमस्कार। देश में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी है, जो कि रात 8:30 बजे से कल सुबह 5 बजे तक के लिए है। गौरतलब है कि कौथे मिलिते और सैपिया पर भी ये कर्फ्यू लागू होगा। कर्फ्यू के तहत हाल में चलाए गए पुलिस अभियान के बाद कुल 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक 16 वर्षीय नाबालिग और एक महिला भी शामिल हैं। पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अधिकांश गिरफ्तारियां कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने से संबंधित हैं। 4 लोगों पर दंगों में शामिल होने का संदेह है, जबकि एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक हथियार रखने के आरोप में चालान जारी किया गया। 6 संदिग्धों को हिरासत में रखा गया है और उन्हें इस गुरुवार को

0: जिला अदालतों में पेश किया जा रहा है। जो छोटी घटनाएं भी सामने आई, घोकायु पेचित गिविया में भड़काऊ व्यवहार और सड़क अवरुद्ध करने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आमोगी में मुख्य सड़क पर कुछ मलबे में आग लगा दी गई, पुलिस ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। घटनास्थल पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इसमें गश्ती, त्वरित हस्तक्षेप टीमें, SMF और SSU की तैनाती के साथ साथ हेलीकॉप्टर से हवाई निगरानी भी शामिल हैं। इन अभियानों का उद्देश्य शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा कर्फ्यू के नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। इस बीच स्थानीय पुलिस अधिकारी विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। वे लोगों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के अनुसार सभी मंदिरों में आज पूजा का आयोजन सामान्य रूप से किया गया है। इस बीच भक्तों से रात 8 बजे पूजा संपन्न करने की मांग की गई, क्योंकि 8:30 बजे से कर्फ्यू होगा। करदाताओं के लिए अंतिम समय सीमा अब बेहद करीब आ गई है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अब केवल कुछ ही घंटे बाकी हैं। अमौरे द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि गुरुवार 15 अक्टूबर की आधी रात है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। करदाता कुछ ही क्लिक में अमौरे की आधिकारिक वेबसाइट amauri.mu के माध्यम से अपना रिटर्न कर सकते हैं। ऐसे में आज शाम अंतिम समय में रिटर्न करने के लिए करदाताओं से तेजी दिखाने की अपील की गई है। यदि किसी टैक्स पेयर को सहायता की आवश्यकता हो तो amauri के हेल्पलाइन 2076000 पर संपर्क किया जा सकता है। और विदेशी स्तर पर आज 15 अक्टूबर को भारत के महान वैज्ञानिक तथा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जा रही है। भारत में उनकी जयंती को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने भारत के मिसाल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। रूट रॉयल ब्रिजवेज में 59 साल के 59-year-old जनाब मोहम्मद नौसाद जुमन, जो नौसाद से जाने जाते थे, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके मकान रल रोड ब्रिजवेज से निकाल कर पहले ब्रिजवेजिया की मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए बोबुआ लालमाटी का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। बेलारो दे नोवेल डिकुवेत में 62 साल की 62-year-old श्रीमती माया दुखी जो माया से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान बेलारो दे नोवेल डिकुवेत से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 2:30 PM। स्कूल लेन कॉन्डेमास कपावे में 66 साल की 66-year-old कुमारी सीता देवी धनु जो गीता से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके भाई अशोक धनु के मकान स्कूल लेन कॉन्डेमास कपावे से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन कॉन्डेमास की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डे 2 PM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।
2: शम्मे फरोजा

आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दिल को सुकून मिलता है अल्लाह के ज़िक्र से, दिल को सुकून मिलता है अल्लाह के ज़िक्र से, रोशन है ज़िंदगी उस रब के शुक्र से, रोशन है ज़िंदगी उसी रब के शुक्र से। मौज़े सामीन, उम्मीद है आप बफ़ज़ले खुदा खैरियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द, नातो सलाम, इसके अलावा आपके पैगामात। कुरान मजीद वो अजीम किताब है जो परेशान दिलों को तसल्ली, बेचैन रूहों को सुकून और आजमाइश में घिरे इंसान को उम्मीद अदा करती है। तो आइए आगाज करते हैं कुरान मजीद की तिलावत से। आज आप समात फरमाएंगे सूरह अल अनकबूत का एक हिस्सा। आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी, और जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और इनको भी आजमाएंगे, सो अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं।

जो शख्स अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जरूर आने वाला है और वो सुनने वाला है जानने वाला है। और जो शख्स मेहनत करता है तो अपने ही फायदे के लिए मेहनत करता है, बेशक अल्लाह तो सारे जहान से बेनियाज है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, हम उनके गुनाहों को उनसे दूर कर देंगे और उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे।

और हमने इंसान को उसके माँ बाप के साथ नेक सुलूक करने का हुक्म दिया है। ऐ मुखातब, अगर तेरे माँ बाप तुझे मजबूर करें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक बनाए जिसकी हकीकत की तुझे वाकिफियत नहीं, तो उनका कहा न मानियो। तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना है, फिर जो कुछ तुम करते थे मैं तुमको जता दूंगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम नेक लोगों में दाखिल करेंगे।

और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर जब उनको अल्लाह के रास्ते में कोई ईजा पहुंचती है तो लोगों के ईजा पहुंचाने को यूं समझते हैं जैसे अल्लाह का अजाब। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से मदद पहुंचे तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे, क्या जो अहले आलम के सीनों में है अल्लाह उससे वाकिफ नहीं? और अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो सच्चे मोमिन हैं, और वो मुनाफिकों को भी मालूम करके रहेगा।

0: और जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि हमारे तरीके पर चलो और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, हालांकि वो उनके गुनाहों का कुछ भी बोझ उठाने वाले नहीं। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और ये अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और लोगों के बोझ भी। और जो झूठ ये लोग घड़ते रहे, कयामत के दिन उनकी इनसे जरूर पुरसिश होगी।
1: वलं

और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। फिर उन लोगों को तूफान के अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को नजात दी और कश्ती को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया।

और इब्राहिम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो, अगर तुम समझ रखते हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है, तुम तो अल्लाह को छोड़कर

बुतों को पूजते और झूठी बातें बनाते हो, जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो वो तुमको रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते, बस अल्लाह ही के यहां से रिस्क तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र करो, उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और अगर तुम झुठलाते हो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकजीब कर चुकी हैं और पैगंबर के जिम्मे खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं।

0: क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खलकत को पहली बार पैदा करता है फिर किस तरह उसको दोबारा पैदा करेगा, यह अल्लाह को आसान है। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खलकत को पहली दफा पैदा किया है, फिर अल्लाह ही दूसरी बार भी पैदा करेगा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम करे और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे।
1: وَمَا

और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से और उसके सामने हाजिर होने से इनकार किया वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो गए हैं और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा।

तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि इसे मार डालो या जला दो, मगर अल्लाह ने उनको आग में जलने से बचा लिया। जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। और इब्राहिम ने कहा कि तुम जो अल्लाह को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो तो दुनिया की जिंदगी में बाहम दोस्ती के लिए, मगर फिर कयामत के दिन एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना दोजख होगा और कोई तुम्हारा मददगार न होगा।

है, हिकमत वाला है, और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और उन्हीं की औलाद में पैगंबरी और किताब रख दी, और उनको दुनिया में भी उनका सिला इनायत किया, और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे।

0: और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अजब बेहयाई के मुर्तकिब होते हो, तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने ऐसा काम नहीं किया, क्या तुम मर्दों की तरफ मायल होते और राहजनी करते हो और अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो। तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। लूत ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत इनायत फरमा।
1: सदकल्लाहु अज़ीम। दौलतों में मिला है ना ताजो तख्त में है, सुकून दिल तो फ़कत रब की यादो ज़िक्र में है। वो घर भी कितना हसीन है जहाँ मोहब्बत हो, जहाँ पे सब्र हो, शुक्र हो, रब की रहमत हो। कुरान पाक में सुकून का ज़िक्र इस तरह किया गया है, तर्जुमा, सुन लो अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि दिलों का हकीकी इत्मीनान उसी के ज़िक्र में है। इंसान दुनिया भर की चीज़ें हासिल कर ले, लेकिन अगर उसका दिल अपने रब की याद से गाफिल हो तो वो रूहानी सुकून से महरूम रह सकता है। और कभी ऐसा भी होता है कि इंसान के पास बहुत कम वसाइल होते हैं, मगर वो नमाज पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, तो उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान हो जाता है। पाक परवरदिगार हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा। आमीन।

0: रहम फरमा।
1: मौजूद सामीन, अभी जो कलाम आप समाअत फरमा रहे थे, इसकी फरमाइश हमसे की थी तेगूश से शमीम बानो ईसल जी ने। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:31 हो चुके हैं। जुमेरात का दिन है, अक्टूबर की 15 तारीख है और आज माह जमादुल अव्वल की 3 तारीख।

आप अपने पैगाम हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगाम हमें भेज सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुकून के हवाले से। घर का सुकून भी अल्लाह ताला की एक

ना हो, हर वक्त झगड़े हो, नाराज़गियाँ हो, एक दूसरे की इज्जत ना हो, तो क्या उस घर में सुकून हो सकता है? और दूसरी तरफ एक छोटा सा घर हो जहाँ वालदैन की इज्जत हो, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत हो, बच्चों के साथ शफ़क़त हो, एक दूसरे की बात सुनी जाती हो, तो वो छोटा सा घर भी जन्नत जैसा महसूस होता है। अल्लाह ताला सूरह अर-रोम में मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के बारे में फ़रमाता है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। यानी घर का सुकून सिर्फ मालो दौलत से नहीं बल्कि मोहब्बत, रहमत, बर्दाश्त और एक दूसरे के हुकूक़ अदा करने से कायम होता है। इसीलिए अपने घरों में नरम लहजा अख्तियार कीजिए, छोटी छोटी बातों को माफ़ करना सीखिए, एक दूसरे की कदर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक नरम लफ्ज़ वो सुकून दे देता है जो बड़ी से बड़ी दौलत भी नहीं दे सकती।

पास कुस्माली जी हाँ, जो कि तैगूश से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली साहब की आवाज़ में एक कलाम की फरमाइश की है और वो इस कलाम की फरमाइश कर रहे हैं अपने दोनों बेटों के लिए। आइए समाअत फरमाइए।

मौजूद सामीन, ज़िंदगी में हर वक्त हालात एक जैसे नहीं रहते। कभी कारोबार में नुकसान हो जाता है, कभी मुलाजिमत की परेशानी आ जाती है, कभी औलाद की फिक्रें सताती हैं, कभी घरेलू मसाइल इंसान को बेचैन कर देते हैं। ऐसे हालत में हमें सब्र और शुक्र का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। महलों की बुलंदी में न सोने के खजानों में सुकूने दिल नहीं मिलता, फ़कत दुनिया के सामानों में। कभी माँ की दुआओं में, कभी बच्चों की हंसी में है, कभी घर की मोहब्बत में, कभी रब की बंदगी में है। कभी सब्र मुसलसल में, कभी शुक्रे इलाही में, कभी सजदों की राहत में, कभी अश्के नदामत में। ये दौलत सबको मिल जाए ज़रूरी तो नहीं, लेकिन खुदा से मांगने वालों को मिलती है नई उम्मीद। हम यही दुआगो हैं कि इस वक्त जितने भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, पाक परवरदिगार उन सबको सुकूने कल्ब अता फरमाए। आमीन। मौजूद सामीन, इस वक्त बहुत से लोग हमारा साथ दे रहे हैं, जिसमें से परवीज़ा भी एक हैं और हम उनके दिल से शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा आसिया हमारा प्रोग्राम सुनना बहुत पसंद करती हैं और वो तमाम मरहूमीन के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक तमाम मरहूमीन को अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए। इसके अलावा मामू मरहूम सफ़ीक कुदादीन, जिनकी आज 15वीं बरसी है, उनके लिए शबनीज़ दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनके तमाम गुनाहों की मगफ़रत फरमाए, उनकी कब्र में सुकून और नूर अता फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके अलावा दागुचिया से अमीरा खास अपनी दादी हबीबा जूलिया, उनकी बेटियां नाजिला, अमीना, नाजिमा, वाहिदा, बेटे मुस्लिम और इम्तियाज़, उनकी बहुएं यास्मीन और रुखसाना, पोते पोतियाँ जरीन, जयान, नेहान, ऐजान की तरफ से बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इनकी दादी हबीबा जूलिया को उस सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। जी हाँ, इसके अलावा बढ़ते हैं चंद और पैगाम की तरफ। हमसे एक और कलाम की फरमाइश की थी समीर ने। जी हाँ, वो ईसाले सवाब की गुजारिश कर रहे हैं अपनी वालदा नाजिला पूरन मस्तान, दादा याकूब, दादी मरियम, चाचा इकबाल शरीफ, नाना यूसुफ, मामू फरीद और बहनोई नवाज़ तिलाउत के लिए और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनके बच्चों और उनकी बेगम को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इसके अलावा वाकवा से शहनाज़ दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व सुकून अता करे, दिलों में मोहब्बतें प्यार अता करे और लोगों को अक्लमंदी से हर कदम उठाने की सआदत नसीब फरमाए।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: स्वर तरंग,
3: स्वर तरंग।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
2: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: की पसंद।
1: गुरुवार 15 अक्टूबर, घड़ी मिला लीजिए 2:45 हो रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर आपकी पसंद इस प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर हम आ गए हैं, आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं रेडियो मॉरिशस पर। और अभी से लेकर 4 बजे तक जो है फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम चलने वाला है। और प्रोग्राम शुरू होने के पहले ही आपके मैसेजेस, आपके फ़ोन कॉल्स यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। उम्मीद करते हैं आपका दिन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा और सब कुछ कुशल मंगल होगा। और चलिए, देर किस बात की है, इस खूबसूरत गीत के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और 4028085 साथ ही 5251700 पर आपके मैसेजेस और फोन कॉल्स।

आपकी पसंद। चलिए यहाँ पर 2:50 आपकी पसंद इस प्रोग्राम में अगले जो है गाने की ओर बढ़ते हैं। प्रदीप जी की आवाज़ में ये अगला तराना नास्तिक फिल्म से लिया गया जाता है। रफ़ीक दौलत और उनके उनकी बीवी नूरजहाँ के नाम और सभी दौलत परिवार के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: और चले फरमाइशी गीतों का ये प्रोग्राम जारी है रेडियो मॉरिशस पर। और अब बढ़ते हैं इस अगले तराने की ओर। अगला जो गाना है, माधुरी जी ने बड़े ही प्यार से इस गाने की फरमाइश की है। नागिन फिल्म का ये जो तराना है जाता है आपके नाम। माधुरी जी, आपकी ओर से गाना जाएगा परी के लिए भी। दोनों बड़े ही प्यार से, रेडियो मॉरिशस हो या रेडियो मनोरंजन हो, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो ये तराना आप लोगों के लिए चल पड़ा।

आपकी पसंद। चलिए, आपके पसंद का प्रोग्राम यहाँ पर जारी है और यहाँ पर कुछ ही क्षणों में हम बढ़ने वाले हैं 3 बजे के समाचार की ओर। और समाचारों के उस पार आपके पसंद का कार्यक्रम जारी रहेगा, चलेगा 4 बजे तक। शुक्रिया आपके फरमाइशों के लिए, शुक्रिया आपके डेडिकेशंस के लिए।

0: 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
1: Your time is sharp 3 PM. आइए सुनते हैं समाचार राजनीति के साथ. नमस्कार.
2: नमस्कार गिनीशा, श्रोताओं को भी नमस्कार. प्रधानमंत्री दफ्तर के मुताबिक कल रात देश में हालात काबू में रहे और किसी बड़ी घटना की खबर नहीं मिली. कर्फ्यू कल शुक्रवार 16 अक्टूबर तक रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम हालात पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और अधिकारियों के संपर्क में हैं. इस बीच कास्कावेल, गोका, यूसुलफेरिनो, मोतेबेलो और शमेगोनिये में गन्ने के खेतों में आग लगाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर जल्द काबू पा लिया गया. कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 9 को हिरासत में रखा गया है और आज अदालत में उन्हें पेश किया जा रहा है. बाकी लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. प्रधानमंत्री दफ्तर ने लोगों से सावधानी बरतने और नियमों का पालन जारी रखने की अपील की है. कोलोवियो में गोली लगने से घायल हुई एलोजीतोमा की हालत में लगातार सुधार हुआ है. स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेशु ने बताया कि आज सुबह एलोजी ने सहारे से चलना शुरू किया और अब वो मुंह से पानी भी पी पा रही है. उसके दोनों हाथ और पैर भी अच्छी तरह काम कर रहे हैं. गंभीर चोटों और मुश्किल ऑपरेशन के बाद इसे एक बड़ी प्रगति माना जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्री ने एलोजी के इलाज में जुटी मॉरिशस

0: और भारत की मेडिकल टीमों का आभार प्रकट किया। देश में हाल की हिंसा और अशांति की घटनाओं में 16 नाबालिगों के शामिल होने पर ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन ने गहरी चिंता जताई है। आज जारी बयान में माता पिता से अपने बच्चों की सुरक्षा पर खास ध्यान देने की अपील की गई है। उन्हें ये जानना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं। बच्चों को हिंसा से दूर रखने के लिए उनसे बातचीत करना भी जरूरी है। ओम्बुड्स पर्सन का कार्यालय इन 16 नाबालिगों के मामले पर नजर रखेगा ताकि कानूनी कार्रवाई में बच्चों के हितों का ध्यान रखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक निजी स्कूल की छत गिरने से 29 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक महिला शिक्षक भी शामिल है। हादसे में 29 लोग घायल बताए गए हैं, जिनमें 5 लोगों की हालत गंभीर है। बच्चों की उम्र 6 से 12 साल के बीच की बताई जाती है। ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आपकी पसंद।
3: चलिए समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। और आपकी पसंद ये जो प्रोग्राम है चलेगा 4 बजे तक, और यहाँ पर फरमाइशों का ये जो सिलसिला है इसे आगे ले जाते हैं। चलिए कोई खूबसूरत सा गाना आप भी सुनना चाहते हैं या किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, बेशक आप हमें कॉल कर सकते हैं 4028085 पर। साथ ही आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 5251700005 पर। तो चलिए इस अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। मौदाल बेयस से मालिनी हमारा साथ दे रही है। गाना जाएगा पति इंद्रजीत के नाम, बेटी है रिशा। सभी परिवार जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अमर प्रेम का ये गाना आपके नाम हम करते हैं।
4: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ,
5: अब क्या सुनाएं?

0: जी हाँ, खूबसूरत सा तराना अमर प्रेम इस फिल्म से लिया गया किशोरदा की आवाज में।
1: आपकी पसंद,
0: चलिए आपकी पसंद ये प्रोग्राम है। बहुत सारे सुनने वाले जो है नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहे हैं सभी को, सो आप लोगों को भी नवरात्रि इस पावन पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज नवरात्रि का जो है पांचवा दिन है, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस समय विश्वानी दुबन जी हमारा साथ दे रही है। गाना यहाँ पर जाता है इंदिरा शारदा के नाम, सहेलिया है नीला, प्रतिभा साथ में है शोभा, गीता सभी सुनने वालों के नाम, सभी को नवरात्रि की मंगल कामनाएं, सभी दुमन परिवार के लिए भी। और सुदेवी जी वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई है, गुड आफ्टरनून, आपको भी गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है। अगला गाना त्रियोली की दीदी लालिता के नाम, कुशल फैमिलीज के लिए। दीदी सुनीता है, शोभा है, देवीना है, बिंदु है, लालोरा से हमारा साथ दे रहे हैं। तब हमारे साथ दीदी माला जुड़ी हुई है, जय श्री अंबिका, सभी जलू परिवार, सभी बिकारी परिवार, राम रतन, राम गुलाम और रघुबर परिवारों के नाम ये तराना हम करेंगे। और सुदेवी जी आपके लिए भी।
2: हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
3: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious नवरात्रि।

0: चले माता रानी सबका कल्याण करे। और यहाँ पर ढेर सारी शुभकामनाएं आ रही है नवरात्रि के इस पावन उपलक्ष में, आप सभी को भी हार्दिक मंगल कामनाएं
1: आपकी पसंद।
0: और चलिए इस समय हमारे साथ जो है जुड़ी हुई है, सभी बंधु परिवार जुड़े हुए हैं ट्रियोले से, हमेशा साथ देते हैं। और ये जो अगला तराना है, आप लोगों के नाम हम करेंगे, किस्मत का तो यही फसाना है, ये खूबसूरत सा गीत सभी बंधु फैमिलीज़ के नाम। और साथ ही इस समय हमारे साथ शातो बनारस से ज्योति जी जुड़ी हुई है, गाना जाएगा रेखा सुरेखा आशनी और सभी मधव फैमिलीज़ के नाम। आज तो इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हम क्या कहें, चलिए हमारी कोशिश होगी कि हम सभी के सभी रिक्वेस्ट को पूरा कर पाए।

अभी के लिए ये तराना चल पड़ा आप सभी के लिए। थोड़ी देर पहले लीला जी बॉशेरी से हमें फ़ोन कर रही थी, जब तक हम आपका कॉल रिसीव करने गए आपका कॉल कट गया, तो चलिए गाना आपके लिए हम करते हैं। हमें पता है इस समय आप हमारा साथ दे रही हैं। ग्रांगुप से सुनीता जी भी हमेशा हमारे साथ जुड़ती है, तो यही गाना सुनीता जी आपके लिए भी। और आफेज जी लावेनियर से हमेशा हमें सुनती है, सभी प्रोग्रामों में भाग लेती है, तो ये गाना आपके लिए भी आफेज जी।

0: आपकी पसंद।
1: यकीनन किस्मत का तो यही फसाना है। खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं इस अगले तराने की ओर। ठोकर फिल्म का ये जो अगला गीत आप सुनेंगे वो होगा मुकेश साहब की आवाज़ में, और ये गाना जाता है सभी पेंटाया परिवार के नाम। एक्वायस सीलू हमारे साथ जुड़ी हुई है और ये गाना वो सबके लिए मांग रही है। और इस समय रिहाना जी भी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और यही तराना हम आपके लिए भी करते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए, कभी कभार ज़िंदगी में हम बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभार मिलता है और नहीं मिलता है। ज़िंदगी ऐसे ही है, कुछ हासिल हो जाता है, कुछ अधूरा रह जाता है, और इनके चलते ज़िंदगी का ये जो सफ़र है चलते रहता है। अभी के लिए 3:30 बज चुके हैं, बढ़ते हैं हम इस अगले तराने की ओर। अवतार फिल्म का ये जो गाना है चलो बुलावा आया है, इस गाने की फरमाइश यहाँ पर आई है हमारे पास। इस गाने को मांगा है साधना जी ने, जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। गाना जाता है सभी जीवन परिवार के नाम, जीवन परिवार रिवेदे क्रियोल, मौदालबिया, यूनियन पार्क, लारोजा और दुबई के जीवन परिवार जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, ये गाना उन सभी के लिए। नवरात्रि की शुभकामनाएं यहाँ पर प्रदीप और प्रमिला जी की ओर से भी, जो कृपया से हमारा साथ दे रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इस समय फ्रांस से मानिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मानिता जी, हम काफ़ी समय से आपका ये गाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन शायद ये गाना हमारे पास नहीं है। तो चलिए, ये जो गाना अभी चलाने वाले हैं, ये हम आपके नाम करते हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक हैं। मॉरिशस में आपके जितने परिवार है, ये गाना उनके लिए, खासकर आप सभी उन स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दे रही है जो परीक्षा में भाग ले रहे हैं, और ये गाना खासकर आपके लिए भी चल पा।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए आपके पसंद इस प्रोग्राम में बढ़ते हैं अगले तराने की ओर। मदर इंडिया फिल्म का जो अगला गीत है, इसकी फरमाइश आई है अमीना जी की ओर से। अमीना जी इस गाने की रिक्वेस्ट कर रही है अपने भाइयों, अपने बहनों के नाम, अपने सभी दोस्तों के नाम। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।

चलिए, यहाँ पर आपकी पसंद इस प्रोग्राम में आप सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। जो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जितने भी सुनने वाले या आपके परिवार के सदस्य अपना बर्थडे मना रहे हैं, MBC रेडियो की पूरी टीम की ओर से आप लोगों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर प्रिया अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, आपको हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर सरिता की ओर से, आपके सभी दोस्तों की ओर से और आपके सभी परिवार के सदस्यों की ओर से, और चलिए जितने भी लोगों का जन्मदिन है आप लोगों को हमारी ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन का मौका बहुत ही खास होता है, बहुत ही विशेष होता है। ऐसे में ये तराना उन सभी के नाम जिनका भी आज बर्थडे है।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए देखते ही देखते सपैर के 3:52 यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं, बढ़ेंगे हम इस अगले तराने की ओर। अनीता जोगारा इस समय हमारा साथ दे रही है और कह रही है कि उनके यहाँ के काली माता मंदिर के जितने भी सदस्य हैं उनके लिए कोई खूबसूरत सा गीत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, और आपकी ओर से ये गाना आपके सभी जोगारा परिवार के नाम भी हम करते हैं। स्वस्ति जी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई है और उन्होंने कहा हो सके तो माँ अम्बे का गाना आपके लिए है, तो चलिए ये जो गाना है स्वस्ति जी आपके नाम हम करते हैं और यही तराना आपकी ओर से आपके परिवार के लिए भी, और चलिए गाना चल पड़ा।
2: हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
3: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

चलिए इसी गाने को हम करुणा जी आपके लिए भी करते हैं और जितने भी यहाँ पर श्रोता नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहे हैं, यही तराना आप लोगों के लिए भी चल पड़ा।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आपकी पसंद यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। इतने प्रेम से आपने हमारा साथ दिया आज, तो इतने सारे फ़ोन कॉल्स और इतने सारे मैसेजेस, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं भक्ति सागर इस प्रोग्राम की ओर। तो इस कार्यक्रम में आप जुड़े रहिए, रेडियो मॉरिशस पर हमारा यूं ही हमेशा साथ देते रहिए। धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
2: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

गुरुवार 15 अक्टूबर रेडियो मॉरिशस पर भक्ति सागर इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। नवरात्रि की मंगल कामनाओं के साथ आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। जय माता दी आप सभी को। श्रोताओं, नवरात्रि अपने आप में एक पवित्र और आध्यात्मिक पर्व है, शक्ति की उपासना का पर्व है और शक्ति स्वरूपिणी माता दुर्गा को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारा भी डॉक्टर शांति महावीर जी से। अभी के लिए आइए माता रानी

श्रोताओं, आज नवरात्रि के पांचवें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता भी कहा जाता है। भक्त इस दिन माँ की पूजा करके सुख शांति और अपने संतान के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। माँ का ये रूप जो है बहुत ही ममता से भरा हुआ होता है। माँ का कोमल स्वरूप माँ की ममता और शक्ति दोनों को ही दर्शाता है।

0: श्रोताओं, भक्ति सागर इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए अब समय हुआ है हम बढ़े कार्यक्रम पीयूष धारा की ओर, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। तारा डॉक्टर शांति महावीर की प्रस्तुति में सुनिए भक्ति एवं आध्यात्मिकता पर आधारित कार्यक्रम पीयूष धारा।
1: प्रिय श्रोता भाई बहनों, पीयूष धारा कार्यक्रम में मैं आप सबका सादर अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वाल्मीकि कृत रामायण की पावन कथा को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम एक गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, मिथिला पुरी में एक नहीं चार चार विवाह संस्कार होने का समाचार जब फैलता है तब प्रजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। श्रेष्ठ कवि वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि ततो राजा विदेहानां वसिष्ठ मिदं ब्रवीत कारयस्व ऋषे सर्वामृषे भी सह धार्मिक। महाकवि कहते हैं कि विवाह संस्कार की शुभ घड़ी में श्रीराम और उनके भाइयों को साथ लेकर महाराज दशरथ मंडप में पधारते हैं। आभूषणों और सुंदर वस्त्रों से भूषित श्रीराम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न अत्यंत ही सुंदर दिखते हैं। चारों वरों को देखकर विदेहराज जनक मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद करते हैं और अपनी बेटियों के सुखी जीवन के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। राजा जनक महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि हे ऋषिवर, अगर आपके हाथों यह विवाह संस्कार संपन्न हो तो हम अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। और श्रोताओ, जनक जी की इच्छा की पूर्ति करते हुए महर्षि वशिष्ठ विवाह संस्कार विधिवत पूरा करते हैं। पाणी ग्रहण विधि संपन्न करते हुए महाराज जनक श्री राम से कहते हैं कि हे श्री राम, मेरी पुत्री सीता आज से आपकी सहधर्मिणी हुई। आप अपने हाथ में इसका हाथ लीजिए। मेरी सीता महाभाग्यशालिनी है और वह पतिव्रता बनकर सदा ही छाया की भांति आपकी अनुगामिनी और सहचरी बनकर रहेगी। श्रोताओं, जो कर्तव्य एक आदर्श माता पिता को पूर्ण करने होते हैं वही कर्तव्य सीता जी के माता पिता भली भांति निभाते हैं। शास्त्र के अनुसार पतिव्रत ही विवाहिता नारी का सर्वोत्तम धर्म बताया गया है। वेद भगवान पुत्रियों के माता पिता को आदेश देता है कि वे अपनी पुत्रियों को उन गुणों से सुसज्जित करें जो गुण सूर्य राजा और वीरों में होते हैं। ऋग्वेद का मंत्र कहता है, देवो न यह पृथिवीम विश्वधाया उपक्षेति हितमित्रो न राजा पुरह सदह शर्म सदो न वीरा अनवद्या पति जुष्टेव नारी। मंत्र के ऋषि पतिव्रता स्त्री के गुणों को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि संसार में उसी स्त्री का आदर होता है, मान सम्मान होता है, जिसका चरित्र ऊंचा होता है, जो अपने पति के विश्वास के योग्य होती है, जो पति के लिए वरदान होती है।

निश्चल होती हैं। वही सच्चरित्र स्त्री समाज में आदरणीय होती हैं। संसार भर में ऐसी पतिव्रता स्त्री का यशगान होता है। ऐसी ही स्त्री आदर्श पत्नी और गृहिणी मानी जाती है। श्रोताओं, वेद कहता है कि स्त्री में सूर्य देव के गुण होने चाहिए। जिस स्त्री में सूर्य के गुण होते हैं वह संसार में प्रतिष्ठा पाती है। सूर्य संसार को प्रकाश देता है, अंधकार को हटाता है और रक्षक और पालक बनकर धरती पर अपनी कृपा बरसाता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण सूर्य पूज्य है। पतिव्रता स्त्री भी पति के कुल के अंधकार को हर लेती है। अपने पवित्र चरित्र से पति कुल को प्रकाशित करती है। चहुं ओर कुल का यश फैलाती है। पतिव्रता स्त्री को वेद ने कुलपा कहा है। कुलपा का अर्थ होता है वह स्त्री जो कुल की रक्षिका और पालिका होती है। ऐसी ही स्त्री को वेद आदरणीय मानता है। सूर्य की भांति ऐसी ही स्त्री घर के भीतर और बाहर आदर मान प्राप्त करती है। इस धरती पर ऐसी ही पतिव्रता स्त्री की पूजा होती है। श्रोताओं, मंत्र के माध्यम से ऋषि आगे कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री में एक आदर्श राजा के गुण भी होने चाहिए। जिस प्रकार राजा राष्ट्र की रक्षा करता है, सबके हित के लिए कार्य करता है, सबसे मित्र के समान व्यवहार करता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री भी पति के वंश की रक्षिका बनकर कार्य करती है। कुल की भलाई के लिए ही वह कार्यरत रहती है। कुटुंब में सभी से वह मिलजुल कर मित्र के समान सबसे व्यवहार करती है। इसीलिए वह अपने पति को प्रिय होती है और कुल का कल्याण कर पाती है। मंत्र के ऋषि पतिव्रता स्त्री को आदेश देते हुए कहते हैं कि हे स्त्री, तुम में सूर्य और राजा के गुण तो होने ही चाहिए, परंतु अगर तुम संसार में अपना यश फैलाना चाहती हो तो तुम्हारे चरित्र में वीरों के भी गुण होने चाहिए। वीर अपने प्राणों की चिंता न करके समाज की रक्षा करता है। समाज की भलाई में ही वीर अपनी भलाई समझता है। इस निःस्वार्थ भावना के कारण ही वीर पूजनीय होता है। समाज में सम्मान का अधिकारी होता है। वेद भगवान की आज्ञा मानने वाली वीर स्त्री मंत्र के माध्यम से कहती है कि अवीरामिव मामयम शरारोरभिमन्यते उताहमस्मि वीरिणी इंद्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मादिंद्र उत्तरः। कि मैं निर्भीक हूँ, निडर हूँ, मेरा मनोबल दृढ़ है, मैं तेजस्विनी और ओजस्विनी हूँ, मैं वीर हूँ और मैंने वीर पुत्रों को ही जन्म दिया है, मैं देवताओं की मित्र हूँ, मेरा चरित्र बल और आत्मबल अप्रतिम है, अपने पतिव्रत और सतीत्व की रक्षा करके ही मैंने अपने मनोबल को पुष्ट किया है। श्रोताओं, महाराज जनक और उनकी पत्नी वेद माता की आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्रियों का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श पत्नी बनने का उपदेश करते हैं। अपनी बेटियों में सूर्य, राजा और वीरों के गुण कूट कूट कर भरते हैं। अपनी पुत्रियों को विवाह संस्कार के उपरांत विदेहराज जनक कहते हैं कि हे मेरी पुत्रियों,

तुम्हें भाग्यशाली ही नहीं बल्कि महाभाग्यशाली बनना है। महाभाग्यशाली बनने के लिए तुम्हें पतिव्रता बनकर अपने पति की सहचरी बनना है। स्मरण रहे सीता कि पत्नी सहचरी और सहधर्मिणी होती है, दासी नहीं। पत्नी पति के पीछे पीछे नहीं बल्कि पति के साथ साथ चलती है। गृहस्थी के प्रत्येक कार्य में अपना योगदान देती है। हे सीता, तुम भी अपने पति श्री राम की सहधर्मिणी बनकर अपने कर्तव्य का पालन करना। अपने पति श्री राम को अपने धर्म से गिरने मत देना। विवाहिता स्त्री के लिए गेरुआ वस्त्र धारण करने की या सिर मुड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। पतिव्रत धर्म का मान जो स्त्री रखती है, स्वर्ग उसके चरणों में माथा टेकता है। हे सीता, तुम अपनी बहनों के लिए आदर्श बनकर रहना, यही मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। श्रोताओं, पत जोड़ नी से पत्नी शब्द बनता है। पत का अर्थ होता है गिरावट, दुख, अज्ञान और नी का अर्थ होता है दूर ले जाना या हटाना। जो पति को गिरने से बचाए, जो पति को दुख से दूर ले जाए, जो पति के जीवन से अंधकार को मिटा दे, वही पत्नी होती है। श्रोता भाई बहनों, पिता के नाते राजा जनक अपनी पुत्रियों को विदाई से पहले उनके पत्नी धर्म से परिचित कराते हैं। वाल्मीकि मुनि हमें जनक जी और योगिनी जी के समान आदर्श माता पिता बनने की शिक्षा देते हैं। आगे की कथा को हम अगले कार्यक्रम में विस्तार देंगे श्रोताओं। तब तक के लिए अंजू और मुझे आप अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्ते।

और शक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा की आराधना हम कर रहे हैं। और माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति जो है अपने आप में इतनी कल्याणकारी है कि क्या कहे। जहाँ पर माँ शक्ति का प्रतीक है, माँ वहीं करुणा को भी दर्शाती है। जहाँ पर माँ ज्ञान का प्रतीक है, वहीं पर माँ परिवर्तन का भी प्रतीक है। सनातन परंपरा में शक्ति वो दिव्य ऊर्जा है जो सभी बुराइयों का नाश करती है और सबका कल्याण करती है। माँ हमें साहस भी देती है, माँ हमें शक्ति भी प्रदान करती है, और माँ जो है वो हमें ये भी सिखाती है कि जितनी शक्ति की आवश्यकता हमें जीवन में पड़ती है, उतनी ही आवश्यकता हमें जीवन में करुणा की भी पड़ती है। और इन दोनों के बिना जीवन कहीं ना कहीं अधूरा होता है।

श्रोताओं, नवरात्रि का ये जो पावन पर्व है जहाँ माँ के नौ रूपों को नौ दिनों के अंतर्गत पूजा जाता है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, नारी शक्ति के अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं माँ के ये नौ रूप। माँ का हर स्वरूप अपने अंदर एक विशेष संदेश, गुण और जीवन के मूल्य को दर्शाता है, और जो भी जीवन के इन मूल्यों को समझ जाता है वो जीवन में सदैव प्रगति करता है, जीवन में सदा एक सुखी जीवन व्यतीत करता है।

श्रोताओं, भक्ति सागर इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि नवरात्रि के ये 9 दिनों की यदि हम बात करें तो नवरात्रि का जो संदेश ये ही नहीं है कि सिर्फ हम पूजा करें या व्रत धारण करें, ये आत्मिक शक्ति, सत्य, धैर्य, सकारात्मकता को जगाने का पर्व है। 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की आराधना करते हुए हम अपने भीतर से अहंकार को मिटाते हैं, हम अपने भीतर के हर भय को मिटाते हैं, हम अपने भीतर के हर नकारात्मकता और दुर्गुणों को मिटाते हैं। और यही सभी दुर्गुण जब मिट जाते हैं तब जाकर हम विजय को प्राप्त करते हैं। और 10वें दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होता है। श्रोताओं, इसी के साथ हम भक्ति सागर इस कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। आपने इतने प्रेम से हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। माँ दुर्गा की अपार कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर, इस पूरे सृष्टि पर सदा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। जय माता दी।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
2: गुरुवार 15 अक्टूबर रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जी हाँ, सदाबहार गीतों का प्रोग्राम लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। सो कैसे हैं आप सभी? ठीक तो है ना? तो चलिए तैयार हो जाइए इस शाम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए इन खूबसूरत गानों के जरिए। अभी से लेकर 6 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं सदाबहार गीतों के इस प्रोग्राम में। जहाँ कहीं से भी आप जुड़े हुए हैं, आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है, तो चलिए अवतार फिल्म के इस आइकॉनिक गाने से आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम

करते हैं आशा जी, महेंद्र कपूर और नरेंद्र चंचल जी की आवाजों में। और ये गाना अपने आप में इतना पॉपुलर है कि क्या कहे। तो चलिए, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, इसी के साथ आज के प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: तो दोस्तों, रेडियो मॉरिशस पर सदाबहार गीतों का ये जो प्रोग्राम है चलता है हर गुरुवार को शाम के 5 से 6 बजे के बीच। कुछ आइकॉनिक, कुछ एवरग्रीन गाने आपके लिए हम चलाते हैं। और अगला जो तराना हम आपके लिए चलाने वाले हैं, ये 80 के सालों में आई फिल्म तेरी मेहरबानियाँ का है। 1985 में ये जो फिल्म है रिलीज़ हुई थी। ऑब्वियसली ये फिल्म अपने आप में बहुत ही पॉपुलर हुई थी। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लन नज़र आए थे, और साथ में इस फिल्म में एक कुत्ता भी था, ब्राउनी, जो बहुत पॉपुलर हुआ था, इसका किरदार भी।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए दोस्तों, श्रोताओं कहते हैं ऐसे तो प्यार करने का कोई मौसम नहीं होता है, प्यार अपने आप में प्यार होता है। और इन गानों से हमें इतना प्यार है कि हम क्या कहें। जब भी इन गानों को सुनते हैं मानो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। और गानों के साथ साथ आपका प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए शुक्रिया। पूरे दिन भर की थकावट जो है इन गानों से उम्मीद करते हैं कि दूर हो रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस अगले तराने की ओर। प्यार करने का मौसम आया,

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: ऐसे दोस्तों, सदाबहार गीतों के इस प्रोग्राम की बात करें तो इस समय हमारे बहुत सारे सुनने वाले जो होते हैं, जो है शाम का खाना बनाते बनाते, शाम के डिनर की तैयारी करते करते हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हमें पता है कि ऐसे वक्त गाने ऐसे होने चाहिए जो दिल को सुकून दे, जो मन को सुकून दे, ताकि खाना बनाने वाले के हाथ का जो स्वाद है वो और भी बढ़ जाए, है ना। तो चलिए इस अगले गाने को जोड़ते हैं। सौतन फिल्म का ये जो तराना है, लता जी की आवाज़ में, ज़िंदगी प्यार का गीत है। चलिए इसे साथ मिलकर गुनगुनाते हैं फिर।

तो चलिए श्रोताओं, एक घंटे का ये जो सफ़र आप लोगों के साथ कैसे शुरू होता है, कैसे ख़त्म होता है, हमें तो पता ही नहीं चलता। देखिए ना, अभी अभी मानो सदाबहार गीतों के इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी और इसी के साथ प्रोग्राम के आखिरी गाने तक हम आ गए हैं। और जैसे हमने नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है तो माँ दुर्गा के नाम से अवतार फिल्म के गाने से शुरुआत की थी, वैसे ही जाते जाते सुहाग फिल्म के इस तराने के साथ प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, जी हाँ उसी का नाम सबसे बड़ा है, वो शक्तिदायिनी है, वो सबका मंगल करती है। तो चलिए माता रानी आप सबका कल्याण करे। और सुहाग फिल्म का ये जो खूबसूरत सा गीत है इसे आप सुनेंगे रफ़ी साहब, आशा जी और साथियों की आवाज़ों में। और ऑब्वियसली इस फिल्म में नज़र आए थे बॉलीवुड की आइकॉनिक जोड़ी अमिताभ बच्चन और रेखा जी। तो चलिए इसी गाने के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, जल्द हम आपसे मिलने फिर लौटेंगे। शुभ संध्या आप सभी को हमारी ओर से, और 6 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। तो सुमिता की ओर से नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आपके प्यार भरे साथ के लिए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के ठीक 6 बज रहे हैं, समाचार सुनिए। नमस्कार, 15 अक्टूबर शाम 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। देश में पिछली रात हालात पहले से काफी शांत रहे, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा। करीब 10 इलाकों में अशांति फैलाने की कोशिशों पर पुलिस ने जल्द काबू पाया, सरकार अब संदिग्धों के खिलाफ पोटा के तहत कार्रवाई करने पर

0: विचार कर रही है। 14 अक्टूबर की शाम से अब तक 42 लोग गिरफ्तार, इनमें एक नाबालिग भी शामिल, 37 लोग हिरासत में, जबकि कर्फ्यू तोड़ने के मामले में 12 लोगों को अदालत में पेश किया जाएगा। कोलंबिया में एलोजी टोमा को गोली लगने के मामले में आईपीसीसी ने 2 अलग अलग जांच शुरू की। सेफ सिटी कैमरों की फुटेज मांगी गई और पुलिस स्टेशन से दस्तावेज जुटाए गए। जांच से जुड़े कुछ पुलिस कर्मियों के विदेश जाने पर भी नजर रखने के लिए कदम उठाने को कहा गया है। देश में शांति और भाईचारा बनाए रखने की कोशिशों को कलाकारों का समर्थन, जेजी ब्रेजुम और यूनियन डेज ऑफिस के सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की और सरकार को अपना सहयोग देने की इच्छा जताई। पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल की छत गिरने से 30 लोगों की मौत, इसमें एक महिला शिक्षक भी शामिल। नमस्कार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि पिछली रात देश में हालात पहले से काफी शांत रहे। करीब 10 इलाकों में अशांति फैलाने की कोशिशों पर पुलिस ने जल्द काबू पा लिया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात पर राहत जताया है कि कल गिरफ्तार किए गए लोगों में कोई नाबालिग नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार संदिग्धों के खिलाफ पुटा के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत कार्रवाई करने की संभावना पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री ने पुलिस और सुरक्षा बलों की मेहनत की सराहना की और कर्फ्यू का पालन करने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। फिलहाल हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को सुनते हैं।
1: Que la nuit dernière fin déroule bien plus calmement. Je remercie tous les Mauriciens qui nous observent le couvre-feu dans l'ordre et discipline. Je remercie aussi les forces de l'ordre qui viennent renforcer l'efficacité de leur terrain. Finalement, une tentative pour mettre des ordres dans moins qu'une dizaine de localités qui viennent maîtriser rapidement par la force policière KSMF. Finalement, 26 arrestations pour violation du curfew et Moka Djerou avec soulagement qui peine aucun mineur parmi. Mon avis informe la population qui va l'autorité concernée et envisage poursuivre les métiers sous Prevention of Terrorism Act, c'est-à-dire la loi contre le terrorisme. En toute transparence, mon besoin Jésus que la police et une force spéciale puis avancer le ban l'enquête, le ban baron de la drogue là, qui a l'origine de tout ça désordre là et qui fait servir nos ban enfants dans un but criminel. Comme vous autres connaissez, il y a beaucoup d'arrestations et démantèlement de ban réseau de la drogue, mais laisse-moi dire clairement, pas pour une aucun répit pour ban mort sans la drogue, peine en place que je peux capable cacher. Travail a commencé et pas pour arrêter jusqu'à tout sa banbar sans la drogue là, derrière barreau. Je remercie encore une fois Ban Force Vive et tout Ban Dimoun qui finit mobilisé dans notre quartier et dans notre propre famille pour éviter Ban violence. Je refais l'appel à chaque Mauricien pour qu'ils aient respecté curfew aujourd'hui soir dans la même discipline et solidarité. Qui nous peut trouver depuis des jours. Moi, les autres, rendez-vous demain, après le Conseil des ministres, pour un suivi de la situation. Bonne soirée et merci.
0: देश में मौजूदा हालात के मद्देनजर जगह जगह पर पुलिस के तैनाती हैं। सुनते हैं डीसीपी जगरू को।
2: Quel objectif ça couvre là?
3: Oui, nous mettons, le commissaire émet un lot pour un couvre, pas pour de rien. Parce qu'il y a une démonstration des bonnes personnes le chemin, et les bonnes personnes peuvent obstruer le chemin.
4: पुलिस कमिश्नर ने यूं ही एक कर्फ्यू लागू नहीं किया है। सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बाधाएं डाल रहे हैं जो गैर कानूनी हैं। सड़कों पर लोग पहिए जला रहे हैं, पुलिस स्टेशनों में आग लगाई गई, पुलिस की गाड़ियां जला दी गईं। पुलिस कमिश्नर के पास कर्फ्यू लगाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। प्रधानमंत्री ने जैसे बताया कि ज्यादातर लोगों ने कर्फ्यू का पालन किया है। कर्फ्यू के दौरान लोगों को घर के अंदर

0: सुरक्षित रहना चाहिए और पुलिस पूरे देश में कष्ट लगाती है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। हम जनता से मांग करते हैं कि आज रात भी कर्फ्यू लागू होगा और इसका पालन करना चाहिए।
1: Alors, nous faisons une requête à la population, comme hier, et aujourd'hui, comme une fenêtre qui peut être dans le couvre-feu ce soir et demain soir, nous demandons à la population qu'ils aient respecté sa bande lourde-là.
2: चौदह अक्टूबर की शाम से पुलिस की कार्रवाई के दौरान 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक नाबालिग शामिल रहा। गिरफ्तार लोगों में से 37 को हिरासत में रखा गया। इस बीच डीपीपी दफ्तर ने कर्फ्यू तोड़ने के मामले में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया है। इन्हें कल शुक्रवार 16 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाएगा। इस अपराध के लिए अधिकतम 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। हम आपको बता रहे थे कुछ देर पहले सुर्खियों में कि देश में हाल की घटनाओं के बाद पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की बिक्री पर नए नियम लागू किए गए हैं। आज 15 अक्टूबर के इन तीनों को डिब्बों में खरीदने के लिए नई शर्तों का पालन करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक इसका उद्देश्य इन चीजों के खतरनाक इस्तेमाल को रोकना है। हालांकि गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
0: एबेन के इस पेट्रोल पंप पर निर्माण क्षेत्र में काम करने वाला एक ग्राहक केवल 2 कान डीजल ही खरीद सका, यानी उसे सिर्फ 20 लीटर डीजल मिला। इस गुरुवार से कैन में ईंधन खरीदने के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। ग्राहकों को अपना पहचान पत्र और ऐसा प्रमाण दिखाना होगा जिसे ये साबित हो सके कि ईंधन किसी अधिकृत व्यावसायिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पात्रों में ईंधन बेचने वालों को खरीदार के कॉन्टैक्ट्स, उसकी व्यावसायिक गतिविधि, संबंधित उपकरणों और लेन देन की पूरी जानकारी भी दर्ज करनी होगी। डानी केंद्रामा कहते हैं, वे हमें आईडी कार्ड देते हैं, हम आश्वस्त करते हैं कि वही लोग हैं। उन्हें बताना होगा कि इसका प्रयोग वे कैसे करेंगे। कैमरा हैं, देखते हैं कि कोई समस्या तो नहीं है। 20 से ज्यादा लीटर तक नहीं दे रहे हैं। ईंधन रखने वाले बर्तनों को उपयुक्त होना चाहिए और सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना भी जरूरी है। कुछ लोग बोतल लाते हैं, उनमें हम नहीं देते, ऐसे पात्र में देते हैं जो सच में काम के लिए प्रयोग किया जाएगा। ये पाबंदियाँ केवल कैन या अन्य पात्रों में ईंधन की बिक्री पर लागू होती हैं। वाहन चालकों को पहले की तरह सामान्य रूप से अपने वाहनों में ईंधन भरने की अनुमति है।
2: कॉलोव्यू में पुलिस की गोली से एलोजी टोमा के घायल होने के मामले में इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन ने 2 अलग-अलग जांच शुरू की है। कमीशन को 2 शिकायतें मिली हैं, जिनमें एक उस वैन के चालक की है जो घटना के समय एलोजी को घर छोड़ने जा रहा था। आईपीसीसी ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मांगी है। जांच अधिकारियों ने कॉलोव्यू पुलिस स्टेशन से इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी जुटाए हैं। कमीशन ने पुलिस कमिश्नर कहा है कि जांच से जुड़े कुछ पुलिस कर्मियों के विदेश जाने की जानकारी देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। हाल में घटनाओं के बीच शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग जरूरी। इस सिलसिले में आज जेजीव रेजोम ग्रुप और यूनियन डेज ऑफिस के सदस्यों ने ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। उन्होंने देश में शांति और एकता बनाए रखने की सरकार की कोशिशों में अपना समर्थन और सहयोग देने की इच्छा जताई। इस हफ्ते की शुरुआत से अब तक गन्ने के खेतों में लगी आग से 17,450 टन गन्ना जल चुका है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान देश के पश्चिमी इलाकों में हुआ है, जहां सिंचाई के कई पाइप भी जल गए। कृषि मंत्री अरविंद बुले ने जांच आज गन्ना किसानों और कृषि उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। गन्ने की कटाई का काम अभी 50% पूरा हुआ है। कृषि सदन के मुताबिक जले हुए गन्ने को जल्द से जल्द काटना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा गन्ने का इस्तेमाल किया जा सके। बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। एक हालिया अध्ययन के अनुसार मॉरिशस में डायबिटीज की दर घटी है, विशेषकर महिलाओं के मध्य। सुनिए रिपोर्ट।

0: न्यूग्रोव स्थित ये विशेष क्लिनिक उन 5 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में से एक है जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज के उपचार और देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फौजी पिखाली कहते हैं, मुझे चोट लगी थी, अस्पताल गया तब पता चला कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज है, तब से सभी इलाज करवा रहा हूँ, आँखों की जाँच आदि करवा रहा हूँ। ये बीमारी आमतौर पर वयस्क अवस्था में धीरे धीरे विकसित होती है। इसमें रक्त में शक्कर यानी ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से ज्यादा होता है। डॉक्टर मोहम्मद यासिया उजिया कहते हैं,
1: अगर किसी को 8% से ज्यादा डायबिटीज का पता चलता है तब उन्हें डायबिटीज सेंटर भेजा जाएगा जहां उन्हें ज्यादा गहन सेवा दी जाएगी जिससे उनका डायबिटीज नियंत्रित किया जा सके। फिर उन्हें उनके इलाके के हेल्थ सेंटर में भेजा जाएगा। प्रतिष्ठित चिकित्सा पत्रिका द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी में हाल में ही प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मॉरिशस में 12 वर्षों के दौरान मधुमेह के मामलों में 3% की अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई है। इससे पता चलता है कि हालिया सर्वे में टाइप 2 डायबिटीज घटकर 19.9% तक पहुंच गया है। पहले ये 23.3% था और प्री डायबिटिक के लिए भी ऐसा ही है। 2009 में ये करीब 24.9% था और 2021 में किए गए सर्वे में ये 15.6% थी।
2: Donc là aussi nous fin trouve une stabilisation et ensuite une réduction de la prévalence des diabètes.
0: चिकित्सा के क्षेत्र में मिली ये उत्साहजनक सफलता आपसा इंटरनेशनल जैसे गैर सरकारी संगठनों के लिए भी प्रेरणादायक है। ये संगठन 3 वर्षों से ज्यादा समय से टाइप 2 डायबिटीज के खिलाफ लड़ाई में जुटा हुआ है। आपसा इंटरनेशनल की अध्यक्षा उद्रे ऑज कहती हैं, हमारे यहाँ सकारात्मक नतीजे देखे जा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, वे अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सजग हैं। मॉरिशियनों को जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि डायबिटीज खामोशी से फैलने वाली बीमारी है, इसके सिम्टम्स नजर नहीं आते और हमेशा इस जाल में लोग फंस जाते हैं। जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है, जटिलताएं शुरू हो जाती हैं, समय रहते जाँच करवा लेनी चाहिए। उचित उपचार और सही देखभाल से मरीजों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।
3: कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि देश में हाल की घटनाओं के बीच शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। इस सिलसिले में आज जेजी रिज़म ग्रुप और यूनियन दिस ऑफिस के सदस्यों ने ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। उन्होंने देश में शांति और एकता बनाए रखने की सरकार की कोशिशों में अपना समर्थन और सहयोग देने की इच्छा जताई है।
4: एक घंटे से भी ज्यादा देर तक प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जेजी वगैजुम संगठन और कलाकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस मुलाकात का मकसद देश में हालिया घटनाओं पर उनके विचार सुनना रहा। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने उनके सुझावों को ध्यान से सुना और जाना चाहा कि अमन का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए वो अधिकारियों के साथ किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं। कैथोलिक आंदोलन जेजी वगैजुम, जिसमें तकरीबन 3,000 सदस्य हैं, उसने हालात को पुरसकून बनाने में अपना योगदान देने का इरादा जाहिर किया।
5: L'écoute et la visite au terrain. Nous, dans cette région de l'île, et comment nous banzom et que les familles aussi actives hein, au niveau des autres familles. Nous, on vit faire un appel aujourd'hui à toute la population mauricienne. Hein. Cet appel, c'est que toutes les familles nous capables vivre dans la paix. Et pour vivre dans la paix, mon corps, qui c'est important que chaque famille soit capable réunie et surtout guette d'autres enfants. Hein, mon corps, les enfants, il est important. Hein, commence, comment dire, et d'autres à vivre une valeur l'essentiel aujourd'hui.
4: कलाकारों की तरफ से सोशल मीडिया पर अभियान पहले से ही शुरू हो चुका है। कई मशहूर आवाजें और चेहरे आगे हैं ताकि लोगों तक अमन का पैगाम पहुंचाया जा सके, खास तौर पर नौजवानों तक।
6: Quand on colère, on écoute la musique qui fait au sens bien. Nous artistes, nous là pour ban jeunes, pour faire montrer si je pas qu'on jeune la musique, nous pour montrer qu'il y a en tant que DJ, en tant que musicien, montrer comment jouer la musique, faire participer, pour être capable gagner sa feeling de la paix, de l'amour et de la sérénité.

0: humanité dans eux-mêmes.
1: Pas capable, reste insensible à ce qui peut passer. Nous, ben, nous autistes, nous appelons, nous faisons appel à l'unité. Et tout le temps, le message est comme ça. Nous pas capable de dire que nous ne comprenons pas nous, ben, nous pas tant d'autres, parce que là, la situation est faite que nous pouvons insister, rejoindre avec d'autres, regagner sa connexion là, pour nous capables de montrer d'autres qui nous l'a. Qui nous tendent la voie. L'île Maurice, c'est pour tout le monde. À nous construire ensemble et nous guettons l'avenir de nos pays.
2: Deputy Prime Minister ne unke is kadam ka swagat kiya. Unka kehna hai ki Murshan samaj mein in logon ki mazboot pehchan aur parivaron ke beech unki baat suni jane ki ahmiyat naujawanon ko buri sangat ke khatron ke bare mein jagruk karne mein madad kar sakti hai. Unhone sabhi logon, khas taur par mata pita se ek dusre ko samajhne aur apni zimmedari nibhane ki appeal ki.
3: Le ZVZ est présent dans différentes régions du pays et de la voix être entendue par ben adulte et nous connaît également qui ben artiste je peux donner un coup de main depuis hier je peux lancer ben appel à l'apaisement je peux faire un appel à ben jeune pour pas les autres être manipulés. Donc, Sabandjimoun qui fait une rencontre, le Premier ministre là, exprime le souhait de donner un coup de main. Je suis déjà présent dans la communauté, dans tous les quartiers à travers l'île.
4: Je connais l'île Maurice, c'est mon pays, c'est mon content, hein, mon content, mon pays, moi.
2: जमीनी सतह पर काम शुरू हो चुका है. प्रतिनिधि अपना अभियान जारी रख रहे हैं ताकि हालात फिर से पुरसुकून हो सकें और लोगों के बीच अमन, भाईचारा और एकता को बढ़ावा दिया जा सके.
5: चौदह अक्टूबर की शाम से पुलिस की कार्रवाई के दौरान 42 लोगों को किया गया है गिरफ्तार. इनमें एक नाबालिग शामिल रहा. गिरफ्तार लोगों में से 37 को हिरासत में रखा गया. इस बीच डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन DPP ने कर्फ्यू तोड़ने के मामले में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया है. इन्हें कल शुक्रवार 16 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाएगा. इस अपराध के लिए अधिकतम 5 साल की जेल की सजा हो सकती है.
6: 14 अक्टूबर की शाम पुलिस द्वारा चलाए गए अभियानों के दौरान एक नाबालिग सहित 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार किए गए लोगों में से 37 को हिरासत में रखा गया है. इन पर कर्फ्यू का उल्लंघन करने, दंगों में शामिल होने और आक्रामक हथियार रखने जैसे आरोप हैं. वहीं कर्फ्यू का पालन नहीं करने के मामले में 12 संदिग्धों के खिलाफ DPP का कार्यालय मुकदमा चलाएगा. उन्हें कल शुक्रवार 16 अक्टूबर को इंटरमीडिएट कोर्ट में पेश किया जाएगा. सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. इसके तहत मोबाइल पुलिस गश्त बढ़ाई गई है. SMF और SSU की तैनाती की गई है. त्वरित कार्रवाई करने वाली टीमें लगाई गई हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई निगरानी भी की जा रही है. इसके अलावा स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की. उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की.
5: पाकिस्तान के पेशावर में एक निजी स्कूल की छत गिरने से 29 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला अध्यापक भी शामिल है. हादसे में 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर है. बच्चों की उम्र 6 से 12 साल के बीच बताई गई है. बचाव दल ने मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम पूरा कर लिया है. तुर्की के इस्तांबुल में भारी बारिश और बाढ़ से 2 लोगों की मौत. शहर में पिछले 80 साल से ज्यादा समय की सबसे तेज बारिश दर्ज की गई है. कई इलाकों में सड़कें और घर पानी में डूब गए, जबकि गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बहती नजर आई. मरने वालों में 14 साल का एक लड़का भी शामिल, जिसकी पानी में बिजली का करंट लगने से मौत हुई है. और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा.
6: आम हालत, मास्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य हवा का असर है. अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और हल्की बारिश होगी. हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके खुली जगहों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है.

समुद्र प्रवाहरेखा के पार खराब रहेगा और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 6:11 पर और कल सुबह सूर्योदय 5:38 पर।

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे लुडोविक, उन्हें हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।

samacha sunyi avenu de rosé rosano la cavienne vacuame la cavienne vacuame ikian be sale ki 91 years old ki goindama ramsomi pedai sham kali mutu logun he ate mani ke naam se adhik jante the ki mrityu ho gayi hai unki arthi kal din ke 10 baje unki beti supaya kali mutu ke makan la cavienne vacua se utha kar antim sanskar ke liye phoenix ki shmshan bhumi li jayegi cremation tomorrow at 10 AM Derby Street for a Side Me 70 years old ke Shri Dilip Muchuram ki mrityu ho gayi hai. Ve pehle CNT mein kaam kiya karte the. Unki arthi kal din ke 1 baje unhi ke makan Derby Street for a Side se utha kar antim sanskar ke liye Bigaha ki shmshan bhumi le jayegi cremation tomorrow at 1 PM 83 years old ki Pavitra Devi Bohan ki mrityu ho gayi hai paida sham bichu ki sundoyal log unhe sarita ke naam se adhik jante the unke arthi kal din ke 1 baje alien sun bobasan se utha kar antim sanskar ke liye kodugod ki shmshan bhumi le jayegi cremation tomorrow at 1 PM Castrel Road Combiato Britannia mein 75 saal ki 75 years old ki Taramati Bhajan ki mrityu ho gayi hai paidaish naam Narayan log unhe Premila ke naam se adhik jante the unke arthi kal din ke 1 baje unke pati Jagdish Bhajan ke makan Britannia se utha kar antim sanskar ke liye Taya ki shmshan bhumi le jayegi cremation tomorrow at 1 PM Bobois Saint-Pierre mein 62 saal ki 62 years old ki Devi Bhattu paidaish naam Bhadori log unhi kavita ke naam se adhik jante the unke arthi kal din ke 10 baje unhi ke makan Bobois Saint-Pierre se utha kar antim sanskar ke liye Sir Constance Saint-Pierre ki shmshan bhumi le jayegi cremation tomorrow at 10 AM number 16 avenue Nabi Quand le vieux mai, 70 साल की 70 years old की सीता बिसेसर की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम अजोदा उनकी अर्थी शनिवार 17 अक्टूबर को सुबह के 9:30 बजे Quand le vieux funeral parlor से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए Quand le vieux की शमशान भूमि ले जाएगी cremation on Saturday at 9:30 AM Matabadal Street, Villenoy-Maybeuge, 67 साल के 67 years old के धीरज मातबदल की मृत्यु हो गई है लोग उन्हें अशोक के नाम से अधिक जानते थे उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी पत्नी प्रेमिला मातबदल के मकान मेबग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पृथ्वीबेलिया मेबग की शमशान भूमि ले जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल शुक्रवार 16 अक्टूबर को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 3:30 बजे तक फिकॉन्फ्लैक में मौसलमा आना फिकॉन्फ्लैक और आसपास के इलाकों में एवेन्यू मुलैं कासे, एवेन्यू दे फ्रुइट, एवेन्यू दे मालैं, एवेन्यू दे मेरू और एम्पास बेकुन में, और शनिवार 17 अक्टूबर को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 3:00 बजे तक कोतेज में और आसपास के इलाकों में स्कूल लेन, NHDC, बो प्लाटू रोड, मौसलमा VOS नंबर 2 में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

如果您刚刚才打开收音机，欢迎收听我们正在播放今天的歌曲节目。

这里是毛里求斯广播电台819频道，音乐陪您陪到底。

0: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
1: बजले प्रभु का नाम। नमस्कार श्रोताओं, अक्टूबर माह का महीना और उसमें भी नवरात्रि, सचमुच एक विशेष शक्ति की अनुभूति हम लोग करते हैं। श्रोताओं, उस शक्ति से, दुर्गा से, माँ के नव रूपों से जो जुड़ जाता है वह अपने भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को महसूस करता है। आइए इस भजन को सुनते हैं।

श्रोताओं, आज पंचमी तिथि है, शारदीय नवरात्रि का पांचवा दिन है और माँ स्कंद माता की हम पूजा कर रहे हैं। स्कंद माता अर्थात बालक को गोद में लिए माँ का रूप अर्थात वात्सल्य। तो श्रोताओं, जहाँ वात्सल्य है वहाँ पर माँ का रूप साकार हो उठता है। तो जब हम माँ के इस रूप को भजें तो मन में वात्सल्य रखें। आप समझते हैं ना कि कभी कभी केवल अपने बच्चों की माँ माँ नहीं रहती, वह जगत माता हो जाती है, जगत जननी हो जाती है, जो सबका भला सोचती है। तो श्रोताओं, ऐसी माँ को सदैव प्रणाम।

श्रोताओं, माँ के हर रूप ने राक्षसों का संहार किया, इसीलिए भजले प्रभु का नाम, अर्थात जो माँ को याद करता है उसकी शक्ति उसके भीतर आती है, और जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं या असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे वैसे ही दूर भागने लगते हैं। इसलिए माँ के साथ जुड़ना, उनके नाम का जाप करना

और अंत में श्रोताओं, देवता लोग भी जिन राक्षसों को हरा नहीं पाते हैं, उनका नाश नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर उन्हें शक्ति की उपासना करनी पड़ती है और शक्ति ही फिर वह रास्ता दिखाती है। स्कंद के रूप में शक्ति की जो ऊर्जा थी उसी ने जन्म लिया था। शिव और शक्ति की ऊर्जा जो अग्नि के समान तेजस्वी

था ऐसा बालक और उसी बालक ने तारकासुर का नाश किया था। तो श्रोताओं, वह जो देवी के रूप हैं, वह कोई भी रूप हो, उन रूपों में एक विशेष ऊर्जा है और देवी के हर रूप में शास्त्र और शस्त्र दोनों हमें दिखाई देते हैं। तो श्रोताओं, ये नवरात्र के दिन हमको विशेष शक्ति दें, हम माँ के हर रूप की उपासना कर सकें और उनसे अपने कल्याण की, मंगल की कामना करें। बस यही चाहिए और यही है भजले उस प्रभु का नाम। इसी के साथ श्रोताओं, आपसे अनुमति लूंगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: अल्लाहु मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़ीद सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की उर्दू नशियात महफिल शब में समीर आप तमाम सामीन का खैर मकदम खुलूस कल्ब से करता है। उम्मीद है कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से खैर वाफियत से हैं। सामीन मोहतरम, आइए महफिल शब की इब्तिदा इस हमद से करते हैं।

आला हजरत के कलामों में कितनी मोहब्बत झलकती है, देखिए कितने प्यार से आला हजरत ने कहा है कि हमारा नबी, हमें भी चाहिए कि मिलकर कहें हमारा नबी सब

जश्न नाते मुस्तफा।

दुरूद पढ़ने से नेकियां बढ़ती हैं और गुनाह माफ़ होते हैं। दुआ की कबूलियत के लिए दुरूद शरीफ बेहतरीन ज़रिया है। परेशानी, तंगी और मुश्किलात दूर होने का सबब बनता है। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफा करता है। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होने का सबब बनता है। सामिन कराम, हम अपने प्रोग्राम महफिल शब के आखिर तक पहुँच चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक और ताकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए महफिल शब के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं और इसी के साथ ये महफिल ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी। शब बख़ैर और ख़ुदा हाफिज़।

नमस्कार, प्रणाम और जय माता दी। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस खास नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी अपनी उषा कौर और आज हम लेकर आए हैं भक्ति, आस्था, प्रेम और माँ के आशीर्वाद से भरा एक सुंदर सफ़र। जी हाँ, नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में हम माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना करते हैं। हर स्वरूप हमें जीवन की एक नई सीख देता है। आज 15 अक्टूबर को नवरात्रि का पांचवा दिन है। आज हम पूजा करते हैं माँ स्कंद माता की, जो भगवान कार्तिकेय की माता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को।

मास्कंदमाता भगवान कार्तिकेय की माता है। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि माँ का प्रेम दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है। आज माँ से प्रार्थना करें कि हर परिवार में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहे।

श्रोताओं, दुनिया में माँ का प्यार एक ऐसा अनमोल उपहार है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जी हाँ, माँ हमारी खुशी में मुस्कुराती है और हमारे दुख में हमें सहारा देती है। आज अपनी माँ का आशीर्वाद अवश्य लीजिए।

श्रोताओं, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु हमें कभी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। माँ स्कंद माता से प्रार्थना करें कि वो हमें हर कठिन परिस्थिति का सामना करने का साहस और सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दें।

जी हाँ श्रोताओं, माँ स्कंदा माता के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे प्यारे देश मॉरिशस में हमेशा अमन और भाईचारा बना रहे, हर बच्चा सुरक्षित रहे, हर परिवार खुश रहे और सभी धर्मों के लोग प्रेम और एकता के साथ जीवन बिताएं।

श्रोताओ, नवरात्रि के पांचवें दिन का रंग पीला है। पीला रंग खुशी, उम्मीद और रोशनी का प्रतीक है। आइए आज हम भी अपने अच्छे विचारों और प्यार भरे व्यवहार से दूसरों के जीवन में खुशियों की रोशनी लाएं।

जी हाँ श्रोताओं, मास्कंडा माता के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे प्यारे देश मॉरिशस में हमेशा अमन और भाईचारा बना रहे, हर बच्चा सुरक्षित रहे, हर परिवार खुश रहे और सभी धर्मों के लोग प्रेम और एकता के साथ जीवन बिताएं।

तो प्यारे श्रोताओं, माँ स्कंदा माता की कृपा से आप सबके जीवन में सुख शांति और खुशहाली बनी रहे। अपनों से प्रेम कीजिए, सबका सम्मान कीजिए और अपने देश में एकता और भाईचारा बनाए रखिए। मैं उषा कौर आप लोगों से अनुमति लेती हूँ, मिलते हैं बहुत जल्द। जय माता दी और आप सभी को शुभ नवरात्रि।

0: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: सभी प्यारे श्रोतागण के सभी आदरणीय देशवासी लोगन के उषा के नमन बाती। कृपया स्वीकार कर जा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में आप लोगन के शानदार स्वागत बाती। दिन भर के थकान के बाद चला तनी रिलैक्स मूड में चला हुआ हमने के साथ बेहतर गीत वन चली और छोटा मोटा डायलॉग भी रही, तो ध्यान देवा जा पहल का गाना सुना।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: श्रोता लोग, जैसे कि जाने लजा नवरात्रि के पावन पर्व बा और आज हा पांचवी रात्रि, आज माता दुर्गा के पांचवा रूप स्कंद माता की आराधना हुईला। चला तो लोग के जीवन में माता रानी की कृपा खूब बरसी और तो हर सब जोन चिंता वो सब

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: साथी लोगन देखते देखते तो अक्टूबर महीना में चलाई ली सा और वो आज तो 15 तिथि हो गल बा और वे यानी खाली 77 दिन रह गल बा ये वर्ष के समाप्त हो के थोड़ा सुन मैथमेटिक का अच्छा है सेहत के लिए तुहर मनोरंजन के साथ साथ तुहर शारीरिक स्वास्थ्य एवं तुहर दिमागी स्वास्थ्य भी हमनी के जिम्मा है।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: हमनी के संगतिया लोगन कुछ दिन से देश एगो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरलक। सभी लोगन चिंता में रहलन कि कब स्थिति में सुधार आए। ईश्वर की कृपा से और हमनी के निस्वार्थ प्रार्थना से मामला में सुधार आए। हमनी के जोन टापू है पूरा विश्व में स्वर्ग मानल जाला। तो चला अगला गीत सुना।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: चला श्रोता लोग, नवरात्रि के अवसर पर खाली एक घंटा के भोजपुरी तड़का हाइजे पर संपन्न होता। देर रात्रि तक दोस्ती निभाईला ए कर लिए एकदम ढेर आभारी है। ई बात पर तुहर से आज्ञा चाहत है। नमस्ते और शुभ रात्रि।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

कुछ आवाजें ऐसी होती है जो पहली धुन से ही पहचान में आ जाती है। किशोर कुमार की शरारत, मोहम्मद रफी साहब की दिलकश आवाज, लता मंगेशकर जी की मिठास और आशा भोसले जी का अनोखा अंदाज, हर आवाज अपने आप में एक पूरी दुनिया है। नमस्कार, मैं हूँ नीलमणि और आपका स्वागत है सुनहरे पल में। आज हम याद करेंगे उन सदाबहार नगमों का जिनका जादू कई दशकों बाद भी बरकरार है।

कभी सोचा है कि कुछ गाने बार बार सुनने पर भी पुराने क्यों नहीं लगते? शायद इसलिए क्योंकि उनमें सिर्फ सुर और ताल नहीं बल्कि जज्बात भी बसे होते हैं। एक अच्छा गीत अपना बोलो धुन और गायक की आवाज से सीधा दिल तक पहुंचता है, और जब संगीतकार की धुन और गीतकार के लफ्ज एक साथ मिलते हैं तो एक यादगार नगमा जन्म लेता है। आपकी पसंदीदा गायक की आवाज कौन सी है हमें बताइएगा जरूर

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: मेरे महबूब।

0: कितना याद रख दालिम तेरे बाबा की बाबा की बाबा की आ, तेरे बाबा की महफिल में मैं भूख हड़ताल कर दूंगा भूख हड़ताल कर दूंगा भूख हड़ताल कर दूंगा।
1: लेकिन छोटी सी एक अर्ज है

0: किशोर कुमार का नाम आते ही कभी शरारती मुस्कान याद आती है तो कभी दिल को छू लेने वाला दर्द भरा गीत। उनकी गायकी में ऐसा अनोखा अंदाज था कि वो मस्ती भरे नगमे भी गा सकते थे और जज्बाती गीतों में भी जान डाल देते थे। और खास बात तो ये है कि किशोर दा ने गायकी के साथ अभिनय और निर्देशन में भी अपनी पहचान बनाई। चलिए अब उनके ही इसी जादुई अंदाज को अप्रिशिएट करते हैं।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

रेडियो के जमाने में गाने का इंतजार भी अपने आप में एक अनुभव हुआ करता था। पसंदीदा नगमा सुनने के लिए लोग रेडियो के पास बैठ जाते थे और कभी कभी गाने के बोल लिख भी लिया करते थे। आज संगीत सुनने के इतने साधन हैं, लेकिन रेडियो पर अचानक अपना पसंदीदा पुराना गीत सुनने की खुशी कुछ और ही होती है। क्या आपके घर में भी रेडियो सुनने की कोई खास याद जुड़ी हुई है? हमें बताना जरूर, हमारे साथ शेयर करना जरूर।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। संगीत की दुनिया में हर आवाज का अपना रंग है, हर धुन की अपनी पहचान है और हर गीत के पीछे एक कहानी है। 60s, 70s और 80s के नगमों ने हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया है बल्कि पीढ़ियों की यादों का हिस्सा भी बने। आज की महफिल में साथ देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं हूं नलमणि और आप सुन रहे थे सुनहरे पल। संगीत से जुड़े रहिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो मॉरिशस
0: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन करीब।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।